0: वंदे मातरम
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य

101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि तदनुसार 23 मई 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है इस मंगल धुन के साथ।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: साथ में फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने

0: और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी अवसंरचना इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना साथ ही विनिर्माण नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर और आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार महापुरुषों का चित्त समृद्धि के समय पुष्प के समान कोमल हो जाता है, किंतु वही चित्त संकट के समय पर्वत शिला के समान सुदृढ़ हो जाता है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 197। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। इसका पहला भाग आज प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहम, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूले बिसरे गीत सुबह 7 से 7:30 से हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फिल्मकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शेफाली शाह पर। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी। संपादन सहयोग काजल भद्र की, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 और रात्रि 11 सुनेगा चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम मैटिनी शो। दिन में 12 से हिंदी समाचार, 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। सुरीला सफर ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 से, दोपहर 2 से त्रिवेणी,

दोपहर 3 बजे से मन चाहे गीत, दोपहर 2:30 से सुनिएगा नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक विजय माल, लेखन रवि शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत अभिनेता लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुन सकेंगे, संपादक सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छायागीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनवाएंगे आपको तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, शाम 7 बजे से आपको सुनवाएंगे विशेष जयमाला, ये प्रस्तुत कर रही है अभिनेत्री नरगिस, इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा, रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा सुनो कहानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र का चौथा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चितलोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से, और 10 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम छाया गीत, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, रात 10:10 से आपको सुनाएंगे ढलती जाए रात।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 197।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा

0: कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। श्रोताओं, आज की संगीत सरिता कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: दोस्तों नमस्कार, और संगीत सरिता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के रागों के बारे में रोचक बातें आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आज का विषय है राग अमृतवर्षिणी। अमृतवर्षिणी का मतलब हुआ अमृत की धारा या वर्षा। जब देश में सूखा पड़ जाए और पेड़ पौधे और खेत सब सूख रहे हों, तब अगर बारिश होने लगे तो उस वर्षा को अमृत ही कहना उचित है, क्योंकि वर्षा से पेड़ पौधे पुनः जीवित हो उठते हैं। अमृतवर्षिणी राग द्वारा ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है। श्रोताओं, आपको याद होगा कि तानसेन के बारे में भी ऐसी ही एक कहानी प्रचलित है। तानसेन ने दीपक राग गाकर ज्वाला उत्पन्न किया था और उस आग को बुझाने के लिए मेघराग को गाना पड़ा। बिल्कुल उसी तरह कर्नाटक संगीत के एक महान वाद्यकार और कंपोजर

मुत्तु स्वामी दीक्षितर ने भी अमृत वर्षिणी राग गाकर वर्षा उत्पन्न की थी, ऐसा कहते हैं। यह घटना करीब 200 वर्ष पहले की है, जब त्यागराजर और दीक्षितर जीवित थे। कहा जाता है कि मुत्तु स्वामी दीक्षितर एक बार दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में एट्टायपुरम से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि पूरे प्रांत में सूखा था और खेत सब मुरझा गए थे। लोग भूख से पीड़ित थे और पानी की कमी थी, और इस हालत को देखकर दीक्षितर को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने उसी क्षण सफर में ही संस्कृत भाषा में एक कृति की रचना की, जिसके शब्द हैं, आनंदामृत कृषिणी अमृत वर्षिणी हरादि पूजिते शिवे भवानी, मतलब भवानी की प्रशंसा में है। इस कृति में देवी भवानी का वर्णन है और कृति के अंतिम पंक्ति के बोल हैं, अमृतेश्वरी सलिलम वर्षय वर्षय वर्षय, अर्थात देवी पानी बरसाओ बरसाओ बरसाओ। इस रचना को गाते ही आकाश में न जाने कहीं से घने बादल घिराए और सलिलम वर्षय वर्षय कहते ही जोर से बारिश होने लगी। लोग अत्यंत खुश हुए और उनकी वेदना भी दूर हो गई, खेतों में पानी भर गया। राग अमृत वर्षिणी का परिचय अब देती हूँ। यह एक औड़व औड़व राग है, अर्थात आरोह अवरोह में 5 स्वर लगते हैं। इस प्रकार

स्वर हैं शुद्ध गांधार, तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद। यह राग चित्रांबरी नाम का 67वां मेलकर्ता का जन्य है। राग सीधा साधा, सरल और अत्यंत लोकप्रिय है और विस्तार भी आसानी से हो सकता है। इसे एक आधुनिक या मॉडर्न राग कह सकते हैं क्योंकि यह करीब 200 वर्षों से ही प्रचलित है। इस राग में बहुत कम बंदिशें मिलते हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध कृति दीक्षितर द्वारा रचित आनंदामृता कृष्णी है। तो अब सुनिए अमृतवर्षिणी राग में इस कृति को, जो आदि ताल में निबद्ध है।

0: अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। इसे प्रस्तुत कर रही है शकुंतला नरसिम्हन। कल इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप सुनेंगे हमारे इसी संगीत सरिता कार्यक्रम में।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजों में पतंगा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।
1: बोल रहा हूँ मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

आइए अब सुना जाए राजा मेहंदी अली खां का लिखा और एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है गीता दत्त की, फिल्म का नाम दो भाई।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई बाहों में
0: जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं दर्द फिल्म का ये गीत।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर में ठीक 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अमृत कलश का समय होगा 7:30 से। कार्यक्रम सुर संगम आप सुनेंगे 8:15 से और कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का समय होगा सुबह 8:30 से, जिसमें हमारी आज की बातचीत का विषय होगा उलाहना देने से बचें। इसके साथ ही कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे एक झलकी, विषय होगा दफ्तर। इसके साथ ही कार्यक्रम में होंगे कुछ एक गीत और जानेंगे शहर की कुछ स्थानीय खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से। आपके संदेश, आपके गीत सुनिएगा 9:00 से और 9:30 से कार्यक्रम होगा बातें आसपास की। 10:00 से सुनिएगा पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। मेहमान होंगी सुश्री एन राजम। विविध भारती के कार्यक्रमों को आप सुनेंगे सुबह 10:00 से 10:30 से। दोपहर 12:30 से सुनेगा अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हेलो अयोध्या सुनेंगे दोपहर 1:00 से व 1:30 से सुनेगा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 2:00 का समय होगा कार्यक्रम गीतांजलि का। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत 2:30 से, जिसमें आज होगा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो सहेली और हमारा आज का विषय होगा कैसे करती हैं जीवों की सेवा। शाम 5:00 से हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा योग और हमारा स्वास्थ्य और मिशन लाइफ स्वस्थ जीवन शैली अपनाए हमारी धरोहर के अंतर्गत राजस्थान के पहाड़ी किले। कवि पाठ सुनेंगे योग पर्यावरण में सफलता, युवा कवित्री होंगी शुभ्रा शुक्ला। आर्थिक जगत में जानेंगे अवस्फीति व अपस्फीति। साथ ही होंगे कुछ एक गीत। लोक संगीत सुनेगा शाम 5:30 से। शाम सुहानी का समय होगा 6:10 से और गूंजे स्वर गांव के सुनेंगे आप 6:30 से। किसानवाड़ी कार्यक्रम का समय होगा 6:45 से। इसके अंतर्गत आज चर्चा सुनेगा गर्मी की जुताई अवश्य करें। साथ ही होगी एक भेंटवार्ता, विषय होगा पशुओं में बांझपन कारण एवं निवारण। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार सहायक अध्यापक और आपसे बातचीत की है आलोक गुप्ता ने।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम में होंगे कुछ एक लोकगीत और जानेंगे बाजार भाव और मौसम का हाल। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:30 से, एक ही कलाकार आप सुनेंगे 8:15 से, और हमारे आज के कलाकार होंगे शम्मी कपूर। महफिल गजल का समय होगा 9:15 से, हेलो अयोध्या आप सुनेंगे 9:30 से, 10:30 से सुनेगा विविध भारती के कार्यक्रमों को, और इसके अलावा समाचारों का अनुप्रसारण होगा अपने निर्धारित समय से। ये तो थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर, और कुछ 7:20 होने ही वाले हैं, और कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।
1: अब्दुल कलाम, निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपये लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है, और अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार व निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान व गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
5: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
3: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप

0: शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यह सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
1: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके चार पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। इस बार सिर्फ घरों की गिनती ही नहीं बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी जनगणना का हिस्सा बन रही है। अभियान के पहले ही दिन 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। गोरखपुर में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं जिनमें 11,000 से अधिक प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
2: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज, यानी कि अराउंड 600-800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है। और ये काम जैसे वो अपनी स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल बांदा लगातार 6ठे दिन प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह प्रयागराज में

0: तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, झांसी और उरई में 45.4 डिग्री सेल्सियस और आगरा में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
1: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: देश में कल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले तीन दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
6: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं, तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
4: अमृत कलश कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये श्री राम स्तुति।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
4: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
4: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
4: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
4: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।

अनुज जलोटा के गए इसी भजन के साथ अमृत कलश का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र

0: अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जो गोड ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में

0: स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्य दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नव भारत टाइम्स ने त्विशा शर्मा मामले में लिखा है पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विशा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती

महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम

0: पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अभी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। प्रातः के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
4: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें। कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
5: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें। आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
4: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
5: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
4: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
5: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

प्रेरणा में अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और साथ ही स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे हंसकर बाहर आ जाना आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन में सफलता वही पाता है जो हर असफलता से सीखता है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। दोस्तों, हार जाना गलत नहीं, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम का मतलब अंत ही नहीं होता, बल्कि एक नए वाक्य की शुरुआत भी होती है। जी हाँ, इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम आज की बात से। हमारा आज का विषय है उलाहना देने से बचें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमें एक दूसरे से बहुत सारी शिकायतें हो जाती हैं, जो कि हमारे रिश्तों के लिए सही नहीं है। दोस्तों, मनुष्य सामाजिक

खिलाड़ी हैं। जीवन में हर तरह के लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। हम सभी तरह तरह के रिश्ते संबंधों में बंधे हुए हैं और ये रिश्ते विश्वास, प्रेम और सम्मान की मजबूत नींव पर टिके रहे होते हैं। ये जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और हर सुख दुख में हमें एक दूसरे का साथ देते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल प्यार और अपनेपन से महसूस किया जा सकता है। कोई भी रिश्ता हो, उसकी पहली शर्त सम्मान है। यदि सम्मान नहीं तो प्रेम भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। सबसे बेहतरीन पल वही होता है जहां एक छोटी सी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी सब कुछ पहले जैसा कर देती है। ये भावनाओं के संबंध विश्वास की डोर से टिके रहते हैं। इन्हें संभल कर संजो कर रखना है तो दूसरों को उलाहना यानी कि शिकायत और ताना देने से बचे। इनसे रिश्ते कमजोर होते हैं। रिश्तों की मिठास और गर्माहट बनाए रखने के लिए, आपकी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि आप इस आदत से बचें। ये अक्सर गलतफहमियां और दूरियां बढ़ाता है और इसके बजाय आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें। दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी भावनाओं को सीधे से व्यक्त करें। शिकायत करने से बात बिगड़ती है, इसलिए आमने सामने बैठकर शांति से चर्चा करें। अपनी बातों को बिना किसी कड़वाहट के साथ सामने वालों के सामने रखें। उलाहना देने से लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और अपनी किसी भी जरूरत को आप सकारात्मक तरीके से बताएं, जैसे तुम कभी घर के काम में मदद नहीं करते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसे कहना चाहिए कि क्या आप घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं। इससे आपकी बात भी हो जाएगी और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। कई बार हम लोगों को बिना बताए ही बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं और फिर हमारे मन का नहीं होता तो उन्हें ताना मारते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अपनी उम्मीदों और जरूरतों को हमेशा स्पष्ट रूप से साझा करें ताकि सामने वाले को पता हो कि आप क्या चाहते हैं। सबसे खास चीज की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें। मान लीजिए कि अगर सामने वाले की कोई भी बात आपको चुभती भी है तो एक बार खुलकर बात करें और उस विषय को वहीं खत्म कर दें। बार बार उन्हीं बातों को याद करने और याद दिलाने से रिश्ते कमजोर होते हैं और आप खुश भी नहीं रह पाते। गुस्से में बात करने के बजाय शांत मन से और अकेले में बात करें। दोस्तों, अपनी टोन शिकायत भरी नहीं बल्कि सुलझाने वाली होनी चाहिए। और एक खास बात की सामने वालों को सिर्फ कमियां गिनने की बजाय उसकी अच्छी बातों के भी और ध्यान दें, सराहना करें। दोस्तों, शिकायतें सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच कड़वाहट लाती हैं, लेकिन किसी भी पहलू पर की गई सकारात्मक पहल हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है। इसलिए रिश्तों में शिकायत करने से बचें। और अंत में यही कहना चाहूंगी, अगर कोशिश दोनों तरफ से हो तो दुनिया का कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। जी हाँ, ये तो थी आज की बात। और आइए अब आगे आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है प्रणाम अयोध्या और कार्यक्रम में गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं एक झलकी। विषय है दफ्तर। लेखक डॉक्टर जीवन लाल गुप्ता और निर्देशक हैं मधुर श्रीवास्तव।

0: राम जी
1: आई थे बड़े बाबू,
2: ले पानी बड़े बाबू।
0: हाँ पानी नहीं नहीं, जाओ जरा कमल बाबू को बुला लाओ।
2: कमल बाबू तो अभी सीट पर नहीं है, कैंटीन कैसी निकले जनार्दन?
0: दफ्तर खुला नहीं कि कैंटीन पहुंच गए।

0: कोई काम ही नहीं करना चाहता?
1: मेरा बस चले तो सारी चाय पान की दुकानें उठवा दू यहाँ से।
2: ये बात तो है बड़े बाबू, ये दुकानियां हट जाए तो दफ्तर का काम डबल हो जाए।
3: बनवा तो न खाइए आप।
0: हाँ हाँ, दो बीड़ा ले आओ कंदन से, और हाँ मसाला अलग रहे।
4: अमे कक्कर, आज तुम बिल्कुल ले बोर करे पर लगे हो का?
5: बोलो बोलो गुरु। आज आते मान खुच्चड़ ने सहवा की टीए फाइल थमाई दी है, करें का?
4: अमे छोड़ो, लंच के बाद देखो,
6: पहले जरा मैडम का तो देख ले।
5: अब बताओ, हम इनके चूड़ी बिंदी देखी कि अपन फाइल?
6: गुरु आ सिंगार कटार कुछ ज्यादा हमका जवाब है, सिंदूर कस भरे है, जैसे सुहाग चो चहा रहा है।
5: फुल स्टेटमेंट आ जाए टाइप हो जाए के नाथ है,
6: आप तो मशीनियां टूटे जाए।
3: घर में मरद से झगड़ा करके आई है कहा?
6: हमका तो कौनो औरो बात जनाब है, मैटनी शो का टिकट कटाए हुई है,
5: आई है भाई मोटर की चाबी घुमावत।
0: बाबा आप लोग दफ्तर में दफ्तर का काम करेंगे या दफ्तर में अपना दफ्तर लगाए रहेंगे? कमल बाबू चलिए अपनी सीट पर, कहाँ निकल गए थे आप, इधर आइए।
2: कमल बाबू साहब बुलावत हैं।
7: आ गए?
2: बस अब भैन बैठे हैं।
8: आजकल खूब लहाए हो मालिक। लहाए क्या है, गरज होती है तभी पूछ होती है।
2: हाँ ये बात तो है कट्टर बाबू, आजकल अवतयमान कमल बाबू का पूछे थे। चलूं देखूं क्या बात है।
8: जाओ भैया जाओ, दुइया की तो दफ्तर में पूछ है भाई, कमल बाबू और मिस खन्ना।
9: हाँ मैं, वो तो अभी तक नहीं आई।
8: ई कमलवा है बहुत दंदी फंदी, कपड़ा की दुकानों खोले है और टूरिस्ट बसों चलावत है, खूब ओबलाइज किए रहा थे साहब का।
9: और मिस खन्ना?
8: उनका का पूछना है भाई, ताप की गुजरिया है ताप की।
6: ले बड़ी लंबी उम्र है, नाम लियो और आ गई।
10: हाय मिसेस मल्होत्रा।
11: हाय मिस खन्ना।
8: चलो यार अब हिया कहाँ संतन के बासा, चलो एक एक चाय लड़ जाए।
5: हाँ हाँ चलो गुरु।
11: हाय, साड़ी कहाँ से ली मिस खन्ना? प्रेजेंट है, कैसी लगी?
10: वंडरफुल।
11: हाय बॉर्डर कितना प्यारा है, कितनी स्मार्ट लग रही है उसने। कितने तक की होगी?
10: आई नो एब्सोल्युटली नथिंग, कहा ना इट इज अ प्योर प्रेजेंट मिसेस मल्होत्रा।
11: हाय जरा घूमो तो इसका पल्लू देखे।
10: लो देखो। हाँ ये इधर से देखो। हाँ
1: बाबा रे बाबा, अरे ये फैशन परेड हो रही है कि दफ्तर है, कमाल है। मिसेस मल्होत्रा आपने वो स्टेटमेंट टाइप किया?
11: कर तो रही हूँ बड़े बाबू।
1: कर तो रही हूँ बड़े बाबू, मेरी गर्दन कटवाएंगी आज आप। और मिस खन्ना ये वक्त है आपके आने का, तीन बार साहब आपको पूछ चुके हैं।
11: सचमुच? हाँ बिल्कुल सच। और हाँ तुम कल आई क्यों नहीं पार्टी में, हुड़क रहे थे तुम्हारे लिए।
10: माई फुट आई डोंट केयर, बहुत ही चिपकू है।
11: हाय ऐसा कहती हो, बॉस है बॉस, बैठेंगे से।
2: बड़े बाबू साहब याद कर रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा आपने मुझे याद किया सर।
6: हाँ वो मेरे टीए बिल का क्या हुआ?
1: आज कैश हो जाएगा सर।
6: आज आज तो आप कई दिनों से कहते चले आ रहे हैं, आखिर दिक्कत क्या है?
1: दिक्कत कुछ नहीं है सर, वो कक्कर बाबू को दिया था, बस बन ही गया होगा, आपके जाते जाते कैश हो जाएगा।
6: जाना तो मुझे अभी है, जाइए तुरंत बनवाइए इमीडिएट।
1: जी जी बहुत अच्छा।
6: और देखिए मिस खन्ना आ गई।
1: जी हाँ आ गई,
6: जरा मेरे पास भेजवा दीजिए।
1: जी बहुत अच्छा सर। आप लोग बस हंसती रहिए, मेरी नौकरी ले लीजिए।
11: क्या हुआ बड़े बाबू?
1: मेरा सर, आपने वो स्टेटमेंट कंप्लीट किया?
11: ये बस दो पेज रह गया है।
1: और मिस खन्ना आप जाइए, आपको साहब बुला रहे हैं।
11: क्यों?
9: आप जाइए उन्हीं से पूछिए क्यों।
11: हाँ हाँ जाती हूँ, डर किस बात का, खा जाएंगे क्या
1: कक्कर? अरे कक्कर कहाँ गया? आज मैं इन लोगों का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा।

0: क्या समझ रखा है इन लोगों ने दफ्तर को? रामदीन कल बाबू को बुला के लाओ।
1: बड़े बाबू, कल रात बड़ी देर तक नींद नहीं आई।
0: नींद नहीं आई क्यों?
1: न जाने क्यों सीने में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।
0: तो
1: आज तबीयत कुछ भारी सी हो रही है बड़े बाबू, अगर लंच के बाद।
0: ना बाबा ना, मुझे वो स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट। साहब मेरी जान खा लेंगे।
1: देखिए बड़े बाबू, प्लीज, आज तबीयत ठीक नहीं है, वरना आपकी बात कभी टालती हूँ, कल सब पूरा कर दूंगी, प्लीज।
0: तुम तो बड़ी मुश्किल में डाल देती हो मिसेस मल्होत्रा। खैर कल जरा जल्दी आ जाना, और भी काम है।
1: जी थैंक यू, आप बड़े अच्छे हैं बड़े बाबू।
0: अच्छा अच्छा, बस बस कीजिए प्लीज, जाइए सीट पर।
2: मिस खन्ना, कप उठाइए, चाय ठंडी हो रही।
3: आज बहुत हो गई सर, अभी अभी एक प्याला पिया था।
2: अरे तो क्या हुआ, इट वोंट हार्म, ठंडा मंगा दूं?
3: नो थैंक यू सर।
2: यू मिस्ड इट, मैंने करीब 10:30 बजे तक आपका इंतजार किया।
3: आई एम रियली सॉरी सर, दरअसल मदर की तबीयत।
2: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मिसेस मल्होत्रा तो काफी देर तक थी, बता रही थी आप काफी अकेली पड़ जाती हैं।
3: जी
2: बाय द वे, वो मकान आपने बदल दिया क्या? कल मैं उधर से गुजरा था, समबडी टोल्ड मी आप कहीं और शिफ्ट कर गई हैं।
3: क्या करती सर, वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था।
2: क्यों क्यों, कोई परेशानी थी क्या?
3: मुझे तो नहीं सर, पर दूसरों को हो गई थी।
2: दूसरों को?
3: जी हाँ, कुंवारी हूँ ना, किसी लड़की का कुंवारी होना और दफ्तर के लोगों का उसे पूछते हुए घर आना कोई पसंद नहीं करता था।
2: क्या मजाक करती हैं आप,
3: मेरी उम्र की लड़कियों का गैर शादीशुदा होना ही लोगों के लिए सरदर्द की बात होती है।
2: इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, दकियानूसीपन लोग छोड़ना ही नहीं चाहते। व्हाट इज योर कमेंट बाय द वे?
3: अपना अपना नजरिया होता है सर, मैं क्या कहूँ।
2: नो नो, आप एक सेंसिटिव लड़की हैं, आई वांट योर कमेंट।
3: मैं तो समझती हूँ सर कि आदमियों का इसमें इतना दोष नहीं, दरअसल औरतें ही फूहड़ होती हैं, आदमियों से प्रेम या नफरत करने के अलावा उनके पास जैसे कोई काम ही नहीं होता।
2: ओ नो नो नो, डोंट से लाइक दैट, लवली लवली कमेंट, यू आर वंडरफुल।
0: कक्कड़ बाबू, आप कहां किसे गए थे? कैश बंद होने को है, आपने टीए बिल बनाया?
4: टीए बिल हम का बनाई बड़े बाबू, सब कागज तो मिस खन्ना अपने पास रखे हैं।
0: मिस खन्ना कहाँ है मिस खन्ना?
5: अब यू हमारी लोगन के बतावे के पड़ी, सुपरवाइजर तो आप हैं।
0: अरे बाबा, कोई दफ्तर में रहे तब मैं सुपरवाइज करूँ, कोई जब सीट पर रहेगा ही नहीं तो क्या मेज कुर्सी को सुपरवाइज किया जाए? ये लड़की गई कहाँ? रामदीन
1: साहब के कमरे में है ना बड़े बाबू, आप ही ने तो भेजा था।
0: ए? अच्छा अच्छा, अब क्या करूं, कौन बुलाए वहां से?
2: ओह यू आर लवली मिस खन्ना, देखिए ना इसीलिए मैंने आपको अपना काम सौंपा है।
1: सो काइंड ऑफ यू सर, अब मैं जा सकती हूँ?
2: श्योर श्योर,
1: थैंक यू सर।
2: जस्ट अ मिनट, वो बाय द वे वाइफ कह रही थी सुपर बाजार में कोई साड़ियों की एग्जीबिशन लगी हुई है।
1: मैं तो वहाँ गई नहीं सर।
2: अच्छा तो फिर ऐसा ना करें कि आज अभी ऑफिस से चलते समय उधर हो लें, आई मीन पहले हम लोग देख लें, इफ इट इज वर्थ फिर मैं साथ में वाइफ को भी लेता जाऊंगा कभी।
1: लेकिन सर।
2: समझ रहा हूँ, आप पैसे लेकर नहीं आई होंगी, और कोई साड़ी पसंद आ गई तो?
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो
2: नो नो मैं समझ गया, देखिए मेरा टीए बन गया होगा, अभी पता करता हूँ, पैसे की आप बिल्कुल चिंता ना करें।
1: लेकिन सर
2: जस्ट वेट।
6: हाँ साहब।
2: देखो बड़े बाबू को बुला लाओ।
6: बहुत अच्छा सर,
0: आपने बुलाया सर।
2: हाँ बड़े बाबू।

0: वो क्या हुआ मेरे टीए का?
1: टीए? वो सर, सर
0: क्या सर लगा रखी है? अभी कुछ बाकी है क्या?
1: नहीं सर, वो कक्कड़ बाबू।
0: क्या कक्कड़ बाबू? रामदीन, कक्कड़ बाबू को बुला ला।
2: जी बहुत अच्छा सरकार।
0: दिन भर आप लोग मटर गश्ती करते रहते हैं, काम हो तो कैसे हो?
1: नहीं सर, वो एक जगह आपको भी दस्तखत करना था इसलिए।
0: अरे तो मैं मर गया था क्या? सवेरे से तो बैठा हूँ, एक भी कागज दस्तखत के लिए मेरे पास नहीं आया।
1: नहीं सर, वो आप, मैं समझा कि आप बिजी हैं सर इसलिए।
3: आपने मुझे बुलाया सर?
0: हाँ, मेरे टीए बिल का क्या हुआ?
3: टीए बिल सर, वो बन तो जाता पर
0: मर गया। मेरी समझ में नहीं आता, इस दफ्तर में ना तो बाहर वालों का काम होता है ना मेरे ही अपना होता है, आखिर आप लोग सारा दिन करते क्या रहते हैं?
3: वो सर, असल में मिस खन्ना के पास आपके टूर डिटेल्स थे इसलिए।
0: देन व्हाट, आप इनसे ले लिए होते? सुबह से बेचारी आकर बैठी हुई है।
3: नहीं सर, मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब, आप कोई काम में।
0: व्हाट नॉनसेंस, बड़े बाबू आप सबसे लिखवा कर एक्सप्लेनेशन मांगिए वरना आई विल सी यू, समझे?
1: जी जी सर।
0: चाहिए सब लोग अपने अपनी सीट पर जाइए, मजाक बना रखा है दफ्तर को, देखता हूं कल से कौन दफ्तर में दफ्तर लगाता है। जाइए जाइए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए यहां से।
4: जी।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: आपके संदेश
3: संदेश से आते हैं,
2: आपके गीत
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
4: दोस्तों, अंतराल के पहले आप सुन रहे थे झलकी, विषय था दफ्तर, लेखक थे डॉक्टर जीवन लाल गुप्ता और निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, और कार्यक्रम में आइए अब शामिल करते हैं शहर के कुछ स्थानीय खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से। उनतीस मई की शाम ठीक 6 बजे होगा ध्वजारोहण। माता भगवती के मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर जारी हुई रूपरेखा। राष्ट्रीय जल मार्गों के 40वें स्थान पर रामनगरी की जीवन रेखा सरयू। शहर से लेकर गांव तक शुरू हुई नंबरिंग, जनगणना 2027 का फील्ड वर्क शुरू, 5272 कार्मिक मैदान में उतरे। कई जगह ब्रेकडाउन व फॉल्ट से घंटों गुल रही बिजली। बृहस्पतिवार की रात सबसे गर्म रही, तापमान 28 डिग्री पार। लू के थपेड़ों के बीच गर्म रातों ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, शुक्रवार को 43 डिग्री पहुंच गया तापमान। दोस्तों, ये तो कुछ खास खबरें थीं जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से लाए थे हम आपके लिए।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। दोस्तों, अत्यधिक गर्मी हीट वेव यानी कि लू लगने की स्थिति बहुत ही प्रभावशाली है आपके लिए, और इससे आप जो है सावधान रहें, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग की सेहत पे असर पड़ रहा है। प्रचार माध्यमों से हीट वेव लू लग के संबंध में जारी की जा रही चेतावनियों पर ध्यान दें। हीट स्ट्रोक के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आदि को पहचानें। यदि उपरोक्त में से कोई भी लक्षण हीट रैश, हीट क्रैम्प का अनुभव हो तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। शरीर को ढक कर रखें, हल्के रंग के वस्त्र पहने। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढक कर रखें। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा का प्रयोग करें। जी हाँ, और अब इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। सुबह के ठीक 9 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
2: फोन नंबर 91168773347।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में ये पहला मैसेज हमने शामिल करा है जो कि हमारे पास आया है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से। विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी सलोनी, पेंटर बाबू, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से, श्रीमती कमला देवी महोबिया, अनाया महोबिया, भगा महाराज और बेबी लूसियान बी का। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद पे फिल्म प्रेम बंधन का ये गीत।

दोस्तों आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे पास जो हमें लिया है, गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाड़ी थांदी का। आप सभी ने सुनना चाहा है गुलामी फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
3: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनते है। अब फरमाइशी लोक गीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती है अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती है फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
3: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोक गीत के फरमाइश करें।
4: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

दोस्तों, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म प्रेम पुजारी से, और इसके लिए हमारे पास फरमाइश आई है नई दिल्ली उत्तम नगर से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल की।

ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म श्री 420 से। फरमाइश आई है हमारे पास रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया जी की।

दोस्तों आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और कार्यक्रम में ये आखिरी फरमाइश जो हमने शामिल करी है हमारे पास आई है सेक्टर 5 सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी की। आप सभी ने सुनना चाहा है संगम फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें आसपास की।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
6: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
5: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
6: और साथ में अपना नाम, पता
5: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
6: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
7: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।

बातें आसपास के कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज अपने इस कार्यक्रम में हम आप ही के लाभ की और आप ही की सुरक्षा के विषय में कुछ बातें करने जा रहे हैं। जी हाँ, हीट स्ट्रोक से कैसे बचें। दोस्तों, गर्मी वर्ष का सबसे गर्म मौसम होता है। इस मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और तेज धूप होती है। भाई, काम तो करना ही है, लेकिन साथ ही सुरक्षित रहना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आजकल धूप बहुत तेज हो रही है, तो बेहतर होगा कि हम सभी कुछ सावधानियों को अपनाएं ताकि हीट स्ट्रोक से बचाव हो सके और आप व आपका परिवार और सभी आपके अपने आप से खुश रह सके। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ORS नींबू पानी पीते रहें। हल्के ढीले वस्त्र पहने, सूती कपड़े पहने तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, बातें तो अभी हम और भी आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है बातें आसपास की आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से, और आज हम आपसे बातें कर रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं। हीट स्ट्रोक एक आपात स्थिति है। खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ उपाय

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

दोस्तों अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम लेकर बातें आसपास की और आज बातें कर रहे हैं हीट स्ट्रोक से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि धूप से बचने की कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर के बाहर ना ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर होगा और अगर हाँ बहुत ज़रूरी है तो छाता टोपी और धूप का चश्मा ज़रूर इस्तेमाल करें। हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को आराम और हवा मिल सके। इसके अलावा आपको अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा, हल्का भोजन करें, बच्चों को भी इसके लिए समझाएं और मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, खरबूज और ककड़ी का सेवन करें, इससे भी आपके शरीर में पानी की कमी पूरी होगी। जी हाँ, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत सलामी फिल्म से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है बातें आसपास की और कार्यक्रम में हम गीत और संगीत के साथ ही आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जिनसे आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। हीट स्ट्रोक यानी लू लगने पर शरीर

का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट या उससे अधिक हो सकता है। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत सतर्क रहें। जैसे कि त्वचा का लाल गर्म होना, तेज सिरदर्द और चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी लगना, कंफ्यूजन या बेहोशी की स्थिति, यदि ऐसी कोई स्थिति आपको लगती है तो व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडी जगह या पंखे की छांव में लिटाएं। शरीर का तापमान कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी रखें। यदि रोगी होश में है तो उन्हें ORS या धीरे धीरे ठंडा पानी पिलाएं। आप ये प्राथमिक उपचार अपनाकर उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मी के मौसम में कुछ आसान से उपाय अपनाकर इस स्थिति से आप बच सकते हैं। जैसे सुबह या शाम को ही बाहर निकलें, दिन में आराम करें, अधिक से अधिक पानी व फलों का रस पिएं, हल्का पौष्टिक भोजन करें, बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें धूप में न जाने दें, बच्चों को धूप में या गर्म हवा में खेलने से रोकें, बुजुर्गों को भी समझाएं कि वो धूप में ना निकले। साथ ही साथ आप अपना भी विशेष ध्यान रखें और इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकते हैं।

आकाशवाणी अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आसपास की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर, और आइए आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी अयोध्या से ही पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पदम ऑन आकाशवाणी, जिसमें हमारी आज की मेहमान है सुश्री एन राजम।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहिए?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद। तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
2: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते

0: आते जाते रहे तो कोई भी आते हैं तो पिताजी मुझसे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो मैं आकर के भाग जाती रही। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो 1-2 फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे

0: काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल
0: हम,
1: ऐसा
0: हम,
1: है
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के।
1: हाँ हा।
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन और वो, तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं।
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका वो, हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में,
1: इंस्ट्रूमेंट में।
0: अच्छा, मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी। इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। अमर जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर
0: है। उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी?
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली
1: की।
0: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
1: बिल्कुल,
0: था
1: बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें?
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है।

0: कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है।
0: जी, जी। फिर

0: गहरा समुद्र है, फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है। पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की, जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो वो पूछा इतने में कर लोगी तुम, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग अब। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे ये हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एक लव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एक लव्य का, तो लोग कहा कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। एक लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया।
1: वाह।
0: तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, कैसा एक्सपेरिमेंट?
0: हाँ, मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी।
0: पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया। इसी तरह हर जन

0: में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजा।

0: के साथ हमारी खास बातचीत इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.eirnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, और जिसमें हमारी आज की मेहमान थी प्रख्यात वायलिन वादिका एन राजम। और अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: पर तुम मरना क्यों चाहती हो, उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो, संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी, और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली

खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ा कर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोग

करोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आए और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है, उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए। लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली। इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
0: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार है साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मदन।

ग्यावस्ती आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो।

दोस्तों, फिल्मी दुनिया में फिल्मी पर्दे पर फिल्मी गीतकारों ने हमारे आभूषणों पर बहुत सारे गीत लिखे और नायिकाओं को वो आभूषण पहनाकर हमें बहुत ही आनंदित किया है ना। तो ऐसा ही एक आभूषण है झुमका। जी हाँ, झुमका, जिस पर हमारे फिल्मी यानी यूं कहीं फिल्मकारों ने और फिल्मी गीतकारों ने बहुत सारे गीत लिखे और पर्दे पर फिल्माए। तो आज उन्हीं गीतों को लेकर हमने इस मैटिनी शो को आपके लिए चुना है। जी हाँ, झुमका। झुमका शब्द आते ही कितने सारे गीत आपके कानों में गूंज गए होंगे ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और न जाने ऐसे कितने सारे गीत। जी हाँ, तो झुमका एक आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक भी है। कानों में झूमते हुए और छन छन की आवाज करते हुए ये सुंदर झुमके हर पहनावे की शोभा बढ़ा देते हैं। तो आज मैटिनी शो में ये झुमके कहर ढाने वाले हैं।

जी हाँ, मिला है किसी का झुमका। तो ये झुमका मिला था फिल्म परख में और आवाज लता मंगेशकर ने दी थी, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था सलील चौधरी ने। अब जब बात झुमकों की चली है तो ये तय है कि आपने एक झुमके के बारे में जरूर सोचा है। वही गाना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो जाहिर है जब झुमका बरेली के बाजार में गिरा होगा तो फिर उस बाजार में जाकर हम झुमका जरूर खरीदेंगे। तो आप भी बरेली के बाजारों से झुमका खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वहां कई खास डिजाइन के झुमके हमें मिल जाते हैं। अगर हम फिल्मी इतिहास की बात करें तो झुमका गिरा रे गाने ने बरेली के झुमकों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया था, है ना। और ये गाना 1966 की फिल्म थी मेरा साया, अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया ये गीत था। और सच पूछा जाए तो ये झुमके आमतौर पर जो बरेली के झुमके हैं काफी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी

मीनाकारी, मोती और कुंदन के काम के साथ पेश किए जाते हैं। और यहाँ के झुमके देखने में जितने बड़े, भारी और आकर्षक होते हैं ना, असल में उनका वजन बहुत हल्का होता है। और कारीगर इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि भारी डिजाइन वाले झुमके भी कानों में चुभे बिना आराम से पहने जा सके। तो चलिए खरीदते हैं ये बरेली का झुमका।

जी, तो मदन मोहन के संगीत निर्देशन में ये था राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आशा भोसले की आवाज थी और ये फिल्म थी मेरा साया। बहुत सारी फिल्मों में झुमकों पर काफी कुछ लिखा गया है, फिल्माया गया है। और झुमकों की जो दुनिया है ना दोस्तों, भारत की तरह ही विविधतापूर्ण है। हाँ, जहाँ हर क्षेत्र अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल से इन सदाबहार झुमकों को एक नया आयाम देता है। चाहे आपको बड़े सुनहरे झुमकों की भव्यता पसंद हो या स्टड झुमकों की सादगी भरी खूबसूरती, हर पसंद और अवसर के लिए एक न एक डिजाइन मौजूद रहता है। जैसे जैसे फैशन के रुझान बदलते हैं, वैसे वैसे फैशन की प्राथमिकताएं भी विकसित होती रहती हैं और हमारी रुचि भी पनपती रहती है। हाँ, एक बात स्थिर रहती है, वो क्या? वो ये कि नारीत्व, संस्कृति और परंपरा के प्रतीक के रूप में झुमकों का जो आकर्षण है वो हमेशा नारी के मन में बना रहता है। और जब हम झुमका शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्लासिक घंटी के आकार के, आमतौर पे सोने चांदी या बारीक कारीगरी से भरपूर झुमके याद आते हैं। और आजकल तो बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल झुमके भी हमें

मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहे तो कोई भी झुमका अपनी पसंद का ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हाँ, ये याद रखिएगा, पारंपरिक झुमके कभी पुराने नहीं होते।

निगाहों ने मार डाला, होए होए होए, धूप है चंदा, जुल्फ है फंदा, बंदा बेहाल है, हाथ में छल्ला, सर पर पल्ला।

जी हाँ, ये गीत फिल्म पायलट ऑफिसर से हमने लिया था और सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने इसे गाया था। आनंद बख्शी के बोल थे, रोशन की धुन थी। तो बात चल रही है आज झुमकों पर, और झुमके तो कई तरह के डिजाइन और स्टाइल में आते हैं और हर मौके और आउटफिट के अनुसार चुने भी जाते हैं। जब बात स्त्री की आती है, औरत की पसंद की आती है, तो नारी इन झुमकों को हमेशा प्राथमिकता देती है। और ट्रेंडी झुमके बहुत तरह के बाजार में हमें मिलते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं और अपने कहना चाहिए आउटफिट में धारण कर सकते हैं। जैसे चांद वाली झुमका, ये चांद के आकार का होता है और इसके नीचे सुंदर घुंघरू या मोतियां लटकी होती हैं। साड़ी या लहंगे के साथ ये बहुत अच्छा लग सकता है। टेम्पल झुमका, ये साउथ इंडियन स्टाइल के झुमके होते हैं जिन पर देवी देवताओं या पारंपरिक आकृतियों की नक्काशी भी होती है। एक मीनाकारी झुमका है जिन पर रंग बिरंगे फूल और डिजाइन की पेंटिंग या नक्काशी की जाती है। एक आता है लेयर्ड झुमका, इनमें एक के नीचे एक कई परतें लेयर्स या घंटियां लगी होती हैं और एक भारी और भरा हुआ लुक देती हैं। कुंदन और पोलकी झुमके भी आते हैं और ये राजस्थानी और मुगल स्टाइल के शाही झुमके होते हैं जिनमें कीमती पत्थर और रत्नों का काम होता है। इसके अलावा मल्टी चेन झुमका, इसमें झुमके के साथ एक चेन जुड़ी होती है जो कान के ऊपरी हिस्से में पिन हो जाती है, जिससे कानों को एक भारी लुक भी मिलता है और कानों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा डेलीवियर झुमके, जिन्हें आप रोजमर्रा के काम में पहन

सकते हैं। अगर आप हल्का और छोटा झुमका पसंद करती हैं तो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छे होते हैं झुमके। और मोती झुमका यानी पर्ल, ये क्लासी होता है और एलिगेंट होते हैं, जिनमें सफेद या रंगीन मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत तरह के झुमके बाजार में मिलते हैं, ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह की डिजाइन इन झुमकों में पसंद है। पर हाँ, देखिए ना, आपको चाहे कोई भी झुमका पसंद हो, लिखने वाले ने यानी फिल्मी गीतकार ने झुमकों के बारे में बहुत खूब लिख दिया है।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: दोस्तों, हमारी फिल्मों में, हमारे फिल्मी गानों में हमारी संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। हमें हर गहने पर कई फिल्मी गीत सुनने को मिलते हैं, पैरों से लेकर सिर तक न जाने कितने महत्वपूर्ण अलंकारों पर हमारे गीतकारों ने गीत लिखे हैं। अब देखिए ना, हम बात कर रहे हैं झुमके की, साथ ही अगर हम बात करें पैरों में पहने जाने वाली चांदी की पायल की, तो ये भी एक लोकप्रिय आभूषण है जिस पर काफी गीत लिखे गए हैं। नहीं नहीं, हम आपको पायल से संबंधित कोई भी गीत नहीं सुनवा रहे फिलहाल, तो हम आपके लिए आज झुमका ही लेकर आए हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि कितने सारे अलंकारों पर हमारे फिल्मी गीतकारों ने इन गीतों को लिखा और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को यूं आगे बढ़ाया।

0: खाली उम्र है,
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना
2: कहते हैं झुमका गिरना आसान है लेकिन झुमके को ढूंढना बहुत गंभीर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, एसडी बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, युगल स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे फिल्म जुगनू के लिए। तो बात चल रही झुमकों की, अगर आज के इस माहौल में हम बात करें तो बहुत तरह के झुमके हमें फैशन के तौर पर मिल सकते हैं। ऑफिस के लिए अगर हम चाहें तो हल्के झुमके जो रोजाना हम पहन सकते हैं, छोटे छोटे झुमके लाइट वेट गोल्ड के या जो है आर्टिफिशियल झुमके भी आप पहन सकते हैं, पसंद किए भी जा रहे हैं। कुंदन के, पर्ल के, शादी लहंगे, शादी में खास तौर से लहंगे और खास जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें आप कुंदन का वर्क किए छोटे छोटे मोती जड़े जो हैं झुमके भी पहन सकते हैं। इसके अलावा सुई धागा इयररिंग्स भी मिल रही हैं और ये जो डिज़ाइन है लंबी पतली चेन और नीचे छोटे डिज़ाइन के साथ साथ आती है जो इंडियन और इंडो वेस्टर्न दोनों तरह का लुक देती है और हमें अच्छी भी लगती है, खासतौर से यंगस्टर्स के कानों में तो ये बहुत अच्छी लगती है। और कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं और कैजुअल जो आउटिंग्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो काले और सिल्वर मेटल के बड़े झुमके मिरर वर्क वाले भी पहन सकते हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर

0: बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग मिडल सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपए तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म कोहरा का ये गीत।

0: आकाशवाणी मुंबई से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आइए आपको आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से सुनवाते हैं अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हेलो
4: सुनो, टेलीफोन नंबर,
5: माय नंबर इज
6: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार।

0: मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें 7376804090 आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम
1: तो दोस्तों अवधि लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले लोकगीत के साथ जिसे आवाज दी है कल्पना एस बर्मन ने

0: अवतार कोई जय है धीरे की राधे खरी खरी अवतार कोई जय
1: तो दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग, और कार्यक्रम में चलते चलते आइए शामिल करते हैं श्याम मुरारी द्विवेदी और साथियों की आवाज को।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और दोस्तों, अब प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या।

0: अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com
1: आकाशवाणी अयोध्या से आप सभी सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपकी दोस्त दीपिका। तो हम बिल्कुल भी आपका प्रोग्राम में वक्त जाया नहीं करेंगे, और हमारे जो भी फ्रेंड्स ऑनलाइन होना चाहते हैं अपनी फोन कॉल्स के माध्यम से, उनकी फोन कॉल्स को रिसीव करके हमें कहना है हेलो।
2: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से फोन लगाया आपने? ओ, हमारे पहले कॉलर जो कि ऑनलाइन होना चाहते थे लेकिन फिलहाल उनकी कॉल कट चुकी है, तो हम देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन है। हेलो,
2: नमस्ते।
1: क्या नाम है आपका?
2: जितेंद्रनाथ पांडे, गोंडा जिला, स्वामीनारायण छतिया, महमूदपुर से बोल रहे हैं।
1: जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। कौन सा गीत सुनेंगे?
2: हमें आंटी नंबर वन का गीत सुना दीजिए।
1: चलिए, क्या करते हैं जितेंद्र जी आप?
2: मैं प्राइवेट में अध्यापक हूँ, इस समय विद्यालय बंद है।
1: अच्छा अच्छा, तो अभी
2: गर्मी बहुत है मैम, पढ़ रही।
1: गर्मी तो सर बहुत ज्यादा है, ये बताइए।
2: लाइट हमारे सबके यहाँ नहीं रहती।
1: अच्छा, मतलब ज्यादा कटती है कि
2: रात भर नहीं रहती है, दिन भर रहता है।
1: थोड़ा सा लोड इस वक्त जी, इस वक्त जो है थोड़ा सा लोड मुझे लगता है बढ़ ही जाता है सर। मुझे लगता है हर घर में इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट यूज
2: चलता है ना।
1: जी हाँ बिल्कुल, सभी लोग अपनी सुख सुविधाओं की वजह से, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सबको थोड़ा थोड़ा कट ऑफ करना चाहिए ना, जिससे सबको वो सुविधाएं मिल जाए। अच्छा अच्छा, चलिए तो अच्छा, लाइट नहीं रहती तो फिर क्या करते हैं?
2: हाथ का पंखा झुलाते हैं और क्या करें, रात भर नींद नहीं आती है, दिन भर तो काम करना पड़ता है, दिन भर क्या करें।
1: नहीं, ये तो बात सही है। तो आकाशवाणी अध्याय कब से सुन रहे हैं आप?
2: हम बहुत दिन से सुन रहे हैं।
1: अच्छा, सबसे अच्छा प्रोग्राम
2: कौन? बहुत अच्छा लगता
1: है। सबसे अच्छा कौन सा लगता है
2: हमें? युवा संवाद, हेलो युवा, हेलो आकाशवाणी, ये सब हमें अच्छा लगता
1: है। अच्छा, और फोन कॉल इसके पहले लगी थी आपकी कभी?
2: बहुत दिन बाद लगी थी।
1: अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताइए कि जब स्कूल बंद हो जाते हैं तो भी अपने स्टूडेंट्स के कनेक्शन में रहते हैं आपकी? नहीं
2: जी, घर में बच्चा है उसको भी पढ़ाते हैं, कहाँ छुट्टी रहते हैं।
1: नहीं, ये तो बात सही है कि मुझे लगता है टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना जो ये कभी भी ऑफ हो नहीं सकता, तो बच्चे कभी अगर आपको फोन करते हैं आपके स्कूल के लिए तो मदद के लिए एकदम हाजिर रहते हैं आप?
2: जी, और बहुत कठिनाई है अध्यापक बनना।
1: जी बिल्कुल, और अगर मैं ये कहूँ कि
2: को कोई सामान नहीं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आपकी समस्या, मैं आपका ये दर्द बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं इस चीज को, कि वाकई छोटे बच्चों को ट्रीट करना, उनको टीच करना वाकई मुश्किल होती है, और मुझे लगता है कि टीचर्स से बेहतर ये कोई कर भी नहीं सकता है। चलिए, तो कितने छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं?
2: एक बच्चे को नहीं संभाल पाते हम, तो 200 बच्चे को संभालना पड़ता है।
1: बिल्कुल संभालना पड़ता है, और उसके साथ साथ उनको बहुत सारी चीजें सिखानी भी होती है ना। बिल्कुल, वो शिष्टाचार से रहें, किताबें भी पढ़ना सीख जाएं, और बहुत सारी उनके बात और व्यवहार में भी हमें परिवर्तन लाना होता है। एक अध्यापक का यही कर्तव्य होता है।
2: रोते हैं तो टॉफी वॉफी देकर
1: जी जी बिल्कुल फुसलाना भी पड़ता है ताकि बच्चे टिके रहे स्कूल में। चलिए, तो मुझे लग रहा
2: है मारेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे।
1: नहीं नहीं, मारना तो कोई सलूशन हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि अगर बातें बच्चों की समझ में नहीं आ रही है तो मारना तो कोई सलूशन नहीं है, मारना तो नहीं चाहिए बच्चों को। चलिए, तो आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी बातों से लग रहा है आप बहुत अच्छे अध्यापक हैं, आप अपना कार्य ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू कॉल करने के लिए।
2: थैंक यू।

0: दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हेलो
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मेरा नाम राम सूरत मिस्त्री, रायपुर।
0: रायपुर से आप बातें कर रहे हैं। राम सूरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले हमें ये बता दीजिए कि आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: प्रेम रोग का गाना सुनेंगे सर, मौर्य ने चढ़ाया फूल, फूल को लेकर आज।
0: चलिए, फिल्म देखी आपने ये वाली?
1: जी जी।
0: अच्छा, कैसी लगी?
1: फिल्म अच्छी है, बढ़िया। अच्छा,
0: और बताइए राम सूरत जी, क्या हालचाल है मौसम का आपके शहर में?
1: मौसम इस समय बहुत गर्मी है, हम लोग बाग में बैठे रहते हैं
0: जी।
1: हाँ, ये हवा पानी करते हैं, चार चार दो लोग इकट्ठा बैठे करते हैं।
0: तो ये जो बाग जहाँ बैठे हैं वो किसने लगाया था?
1: अरे बहुत पुराना बाग, हमारे बाबा दादा का लगाया बाग है।
0: यही खास बात होती है, बिल्कुल पेड़ों की कितना जाने वो
1: बड़ा सा ताल है
0: जी। अरे वाह, आपने तो ऐसा चित्र खींच दिया एकदम आंखों के सामने कि मेरा ही मन हो रहा है कि मैं भी थोड़ी देर आके वहाँ पे बैठ सकूं।
1: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, जो प्राकृतिक हवा होती है ना, ये वाली बात किसी भी मशीनी हवा में हो ही नहीं सकती।
1: अरे घर पे हमारे पंखा उंखा है, लेकिन बाहर निकल के बाग में बैठते हैं।
0: बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि वो बात उसमें होती ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि अब तो बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो कुछ पेड़ पौधे लगाने की प्लानिंग है कि नहीं?
1: जी जी, पेड़ वेड़ लगाए हम लोग।
0: बिल्कुल लगाना चाहिए ना,
1: गड्ढा भी बना दिए हैं।
0: अच्छा, अरे वाह, मतलब तैयारियां पूरी आपने शुरू कर दी हैं।
1: जी जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। जब आपने ये कहा ना कि गड्ढे बनाए, इसका मतलब कि आप वाकई मतलब सीरियस हैं पेड़ पौधों को लगाने को, और बिल्कुल हमारी आने वाली पीढ़ियां भी। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे दूसरे श्रोताओं को भी, ये होना ही चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कैसे कह सकें कि हमारे बाबा दादा ने ये बाग लगाया था जहाँ आज हम बैठे हैं।
1: चलिए, अपने साग सब्जी भी लगा दी है, बैगन है, टमाटर है, सब लगा है।
0: अच्छा, मतलब पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियों का भी फायदा उठा रहे हैं आप।
1: जी जी।
0: चलिए, तो चलिए आपके लिए आपका फरमाइशी गीत हमने प्ले कर दिया, आपने हमें कॉल किया उसके लिए थैंक यू।

0: तो दोस्तों हीट वेव की समस्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है, तो हमें अपना देखभाल करने की ज़रूरत है, अपने साथ वालों की देखभाल करने की ज़रूरत है। इसमें हर वो चीज़ फॉलो करिए जो आपको हीट वेव से बचा के रखे। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से फ़ोन लगाया आपने?
1: मैडम मेरा नाम अर्जुन कुमार सोनकर
0: जी,
1: छोटा रमना देवकाली रोड अयोध्या।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। गीत कौन सा सुनेंगे आज?
1: फिल्म है समझौता मैडम।
0: चलिए तो आपके लिए गीत हम निकाल लेते हैं। बड़ी दूर से आए, लेकिन आप तो काफी कर... जी हाँ जी,
1: ये गाना मैं अपने दो मित्र हैं उनको
0: जी
1: डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी सुनवा दीजिए अपने दोस्तों को।
1: एक है बसंत कुमार सोनकर और एक रविंद्र कुमार सोनकर है, उन्हीं के नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ गाना।
0: चलिए तो आपके दोस्त इस वक्त रेडियो सुन रहे होंगे कि नहीं?
1: हाँ जी मैडम, मैडम रेडियो सब सुनते हैं।
0: अच्छा बोल दिया आपने,
1: सुनता है कोई कोई रेडियो दुकान पे रखे वो सुन रहा, रेडियो दुकान पे मैं भी रखा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम।
0: अच्छा तो कौन सी किस चीज की दुकान है आपकी?
1: पान की दुकान है मैडम।
0: अरे वाह, तो
1: एक रेडियो यहाँ पे है, एक रेडियो मेरे घर पे, परिवार वाले भी सुन रहे हैं सब।
0: अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर चीज है कि रेडियो रेडियो के लिए आप लोगों का प्रेम है ना, वो बिल्कुल यूं ही बना रहना चाहिए।
1: जो चीज रेडियो के अंदर मिलेगा वो और किसी चीज में मिलता नहीं है।
0: बिल्कुल आपने आज
1: तो हर चीज मिल जाती है।
0: हाँ जी जी,
1: दूर देश की खबरें, आड़ी पड़ोस की मौके सब न्यूज मिल जाती है।
0: बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं।
1: और जो प्रोग्राम अयोध्या आता है सुबह, उसमें देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज आते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: प्रोग्राम खबर आती है, मंदिर है, मस्जिद है, सब चीज की पूरी डिटेल मिलती है उसमें।
0: बिल्कुल, बातें आसपास की सुनिए, आपको अयोध्या के आसपास की जितने भी खास जगह
1: हैं।
0: जी जी बिल्कुल, मतलब आप एकदम हमारा आकाशवाणी अयोध्या पूरे ध्यान से सुनते हैं आपने सारे प्रोग्राम की।
1: क्या करें, सुबह सुबह 6 बजे खोलता हूँ
0: जी,
1: फिर 8 बजे दुकान पे आता हूँ, दुकान पे खोल देता हूँ, दुकान पे शाम 8 बजे तक चलता है, 8 बजे के बाद घर जाता हूँ, घर में फिर दूसरा रेडियो चालू हो जाती है, घर पे है तो 11 बजे तक चलता है।
0: चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए अरविंद जी, आपने बताया कि आपकी पान की दुकान है, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई छोटा बच्चा आप यहाँ से ऐसी कोई चीज लेने आया हो तो आपने उसे मना किया हो, उसे समझाया हो?
1: नहीं नहीं, बच्चा तो कोई भी आते नहीं मैडम, वो आता भी तो उसको मना कर दिया, अब काफी भी सब रखते हैं दुकान पे, उसको भी देते हैं।
0: चलिए अच्छी बात है ना, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पे हम सभी को निभानी चाहिए।
1: कोई चीज नहीं मैडम।
0: चलिए धन्यवाद, तो आपने हमें कॉल किया जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपका फोन उठा रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, आपने कॉल किया और आपका फरमाइश किया हुआ गाना आपके रेडियो सेट पर।
2: बहुत अच्छे बच्चे।

0: समझे। दोस्तों अक्सर हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ होता है जब हमें रिएक्ट करने की जरूरत होती है, हमें उस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत होती है, लेकिन हमें ये लगता है कि ये सीधी तौर पर हमसे जुड़ा हुआ मामला है ही नहीं, तो हम इस पर प्रतिक्रिया क्यों दें। लेकिन कभी कभी सामाजिक तौर पर कुछ चीज़ों पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी होता है, क्योंकि चीज़ें हमेशा एक चक्रीय गति में चलती हैं और कभी न कभी उस गलत बात का असर हमारे ऊपर भी होना तय है। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मेरा नाम संगम है।
0: संगम जी, अपना रेडियो सेट थोड़ा सा दूर कर दीजिए।
1: रुक जाइए मैडम जी।
0: जी
1: हाँ मैडम जी बोलिए।
0: जी तो फिर आपने कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं अयोध्या से बात कर रहा हूँ, फैजाबाद से।
0: अयोध्या फैजाबाद जी, बिल्कुल। अब अयोध्या हम तो पहचान ही गए, तो ये बताइए संगम जी गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: सर मैम कोई सा भी लगा दीजिए, मनपसंद, आपका मनपसंद जो।
0: अच्छा आपको मेरा मनपसंद गाना सुनना है, तो चलिए कोशिश करते हैं कि जो मुझे मन पसंद हो वो आपको भी पसंद आ जाए। क्या करते हैं संगम जी आप?
1: अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं।
0: किस क्लास में है?
1: 10th में है।
0: मतलब हाई स्कूल में पहुंचे हैं कि हाई स्कूल का पेपर दे चुके हैं?
1: दे चुके हैं।
0: अच्छा तो फिर कैसा रहा रिजल्ट वो तो बताइए।
1: 62%
0: यूपी बोर्ड,
1: सीबीएसई बोर्ड।
0: चलिए कोई बात नहीं, तो आगे क्या करने का इरादा? अच्छा सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है?
1: सब्जेक्ट मेरे को बायो।
0: बायो पसंद है आपको, क्यों? अच्छा ऐसा क्यों है कि बायो ज्यादा पसंद है आपको?
1: क्योंकि उसमें डॉक्टरी के लिए जाना अच्छा रहता है मैम।
0: अच्छा तो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं?
1: यस मैम।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने प्रयास शुरू किया कि नहीं? अरे मतलब आपने अपनी तैयारियां शुरू की कि नहीं?
1: अभी नहीं, अभी एडमिशन लेंगे छुट्टियों के बाद।
0: नहीं नहीं छुट्टियों के बाद। अच्छा अभी छुट्टी में क्या करने वाले हैं आप?
1: अभी गांव जाएंगे।
0: अच्छा तो गांव में क्या करेंगे?
1: गांव में घूमेंगे, दोस्तों से मिलेंगे।
0: तो उसके लिए तो मुझे लगता है एक हफ्ता काफी है, फिर भी पूरा जून बच जाएगा ना?
1: हाँ।
0: तो फिर तो जून में आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए।
1: हाँ।
0: मतलब सच में ज्वाइन करने वाले हैं?
1: हाँ हाँ।
0: चलिए ठीक है, तो आप अब जब दोबारा कॉल करिएगा मुझे तो जरूर बताइएगा कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली। ठीक है?
1: ठीक है
0: ठीक है संगम, तो हम लोग फिर से दोबारा बातें करेंगे, ठीक है ना?
1: ठीक है, गाना बजा दीजिए।
0: ओके थैंक यू।

0: जी हाँ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, बस एक बार खुली आंखों से सपने देखने की जरूरत है और पूरे मन से उस सपने को पूरा करने की जरूरत है। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: ग्राम दुड़न खेरा तहसील बल्लूवर जिला टीकों मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, आनंद यादव।
0: आनंद यादव जी, और गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: गाना सुनना है आज तुझको पुकारा मेरा सब प्यार।
0: चलिए ठीक है,
1: फिल्म फिल्म का है।
0: चलिए तो और बताइए आनंद यादव जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं किराना दुकान चलाता हूँ।
0: अच्छा, किराने की दुकान है आपकी, तो दुकान पे रेडियो रखा हुआ आपने सुनने के लिए?
1: जी जी जी, रेडियो ऑनलाइन जो ऑफलाइन सुनता हूँ।
0: जी जी,
1: वो साउंड वगैरह है।
0: अच्छा, तो ये बताइए मौसम कैसा है आपके शहर का?
1: मौसम मैं देहात से बोल रहा हूँ मैडम।
0: हम्म,
1: और अभी गर्मी हो रही है,
0: 42 डिग्री। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब पूरे उत्तर भारत में लगभग ऐसा ही कुछ कुछ सा टेम्परेचर चल रहा है हमारे यहाँ ना।
1: जी जी। आप स्थान तो आप जानती हो, मध्य प्रदेश है, जो आपने ओरछा सुनाया थी?
0: ओरछा?
1: हाँ, ओरछा के लगभग के हैं टीकमगढ़ जिला में।
0: अच्छा बिल्कुल, मैं तो ओरछा गई भी हूँ, मैंने वहाँ मंदिर में दर्शन भी किए हैं, बहुत ही सुंदर मुझे तो शहर लगा, वो मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है।
1: जी जी, उसी आसपास से बोला है, आकाशवाणी हमारे लिंगा पाए छतरपुर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो आकाशवाणी अयोध्या सुनते रहते हैं हमेशा?
1: जी जी, हेलो हेलो, रात में भी सुनता हूँ, हेलो अयोध्या।
0: हम्म, हम्म,
1: जी अभी भी सुनता हूँ।
0: चलिए,
1: कार्यक्रम सुनते हैं हेलो अयोध्या।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलिए आपका गीत हमने ढूंढ लिया है, प्ले करते हैं हम आपके लिए।
1: जी जी,
0: चलिए, आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद।

0: और दोस्तों प्रोग्राम में चलते चलते एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो। चलिए कोई बात नहीं, एक हमारे कॉलर थे जो बहुत ही इच्छुक थे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तो हमें लगा कि कम से कम चलते चलते उनसे बातें ही कर ले। हेलो
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: रामानंद
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने? अच्छा, अयोध्या से बातें कर रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी।
0: क्या करते हैं आप?
1: कैटरिंग का काम करते हैं।
0: अच्छा, मतलब कि अच्छा अच्छा खाना बना के दूसरों को खिलाते हैं, है ना?
1: जी मां जी।
0: अच्छा, तो अभी तो उस तरह का कोई खास सीजन नहीं चल रहा है ना, कि चल रहा है काम?
1: जी मैम, सीजन खत्म हो चुका है अब।
0: तो अभी जब ये ऑफ सीजन होता है तो क्या करते हैं आप लोग?
1: आप सीजन में बैठे रहते, इधर उधर काम वाम आ जाता है।
0: तो ऑफ सीजन में कुछ ऐसा नया नहीं ट्राई करते रहते कि कोई एक नई रेसिपी ट्राई कर लूं, ताकि जब जब नई दावत हो तो कुछ नया खिलाऊं सबको? नहीं, ये तो बात सही है ना कि मैंने लोग डिसाइड करके आपको बता देते होंगे। अच्छा, कभी मतलब जो फीस होती है वो तो आप लोग को पेमेंट होती ही होगी, लेकिन कभी किसी ने खूब तारीफ वगैरह की कि भाई मजा आ गया बिल्कुल आपके हाथ के खाना खा के?
1: ये तो बहुत अच्छा बात है।
0: तो ऐसा होता है कि नहीं?
1: होता है, अच्छा होता है।
0: अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है भाई, जब मेहनत करिए और कोई तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है। चलिए तो भाई, अब इस प्रोग्राम में हमारे पास ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, तो चलते चलते हमने जी बस इसीलिए मुझे लगता है कि वो कुछ न कुछ कनेक्शन ऊपर वाले से हुआ, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे आपका फोन प्रोग्राम में शामिल कर लेना चाहिए। तो चलिए, आज तो ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, तो दोबारा फिर हम कभी जरूर बातें करेंगे, और आज आपने फोन कॉल की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या में ये थे हमारे इस प्रोग्राम के आज के लास्ट कॉलर, और इन्हीं सारी बातों के साथ हमारा आज का ये हेलो अयोध्या कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9

0: 6798901
1: सुना थे सखी सुना थे कार्यक्रम मंगना माँ होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुना थे अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 8303991111 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: सुनिए
5: कहिए कहिए
4: सुनिए भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा और इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम में शुरू करते हैं आपके संदेशों को पढ़ने का सिलसिला। सबसे पहला संदेश हमारे पास रवि कुमार राहुल का अंबाला हरियाणा से, और हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत। इसी गीत की फरमाइश की है आरसी कांबड़े ने। इसी फिल्म को उनके गीत को सुनना चाहा है दिनेश वर्मा ने रिगनी छत्तीसगढ़ से, इंजीनियर फैशल इमाम अररिया बिहार से, विजय सुराकर मुताला महाराष्ट्र से, मोहम्मद यासीन अंजान गिरडी झारखंड से, संजय ढींगिया उत्तर प्रदेश बागपत से, राजेश कुमार वर्मा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, अरविंद कुमार बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, विक्रम मालवीय आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, अरुण कुमार मालवीय चौराहा वाराणसी से, और आफताब अंसारी इसी गीत को सुनना चाहते हैं गंज डुंडवारा से। पुंजली नावाकर ने हमें ये संदेश भेजा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। जाकिर मंसूरी का ये संदेश है मुंगीसापुर से। लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा गंगा नगर राजस्थान से। ओम प्रकाश राय बाबापट्टी बलिया से। प्रमोद कुमार साहू छत्तीसगढ़ से, और राहुल मनवर इसी गीत को सुनना चाहते हैं यवतमाल से। तो आप सभी की पसंद पर आइए कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं लता मंगेशकर की आवाज को। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

तो दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम आधारित होता है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत पर। और फेसबुक पेज पर जो हमारी अन्य फरमाइशें आई हैं वो हैं नीलू मेघ जी की, जो हमें खत भेज रहे हैं राजधानी रायपुर से, और आप सुनना चाहती हैं फिल्म दो रास्ते का गीत। इसी गीत की फरमाइश है अल्ताफ हुजारे की सांगली जिला जसशहर से, हीरामन शेंदे जी की अमरावती से, विनोद वंदालकर की रायपुर छत्तीसगढ़ से, सुरेश गगनेजा की जलालाबाद वेस्ट से, दिलावर खान रघुवीर नगर से, संजय कुमार साहू पोटिया कला दुर्ग से, बी आई धाकड़ उज्जैन मध्य प्रदेश से, निसार सलमानी तेलीवाला उत्तराखंड से, राधेश्याम शर्मा सिरसा हरियाणा से, रजाक मोहम्मद हनुमानगढ़ टाउन से, जगमोहन सिंह प्रजापत बागपत से, विष्णु टेलर इसी गीत को सुनना चाहते हैं भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, धीरज गुप्ता उगेती से, सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराव से, राधा नामदेव सहारनपुर से, और कमल सानी इस गीत की फरमाइश कर रहे हैं रामगढ़ कैंट झारखंड से, फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से, रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से, शहरुन नूर अंसारी बरेली से, और रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से। तो आप सभी की पसंद पर आइए कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं फिल्म दो रास्ते का ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

0: पाव भर साहब, क्या हाल है
1: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
1: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
2: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
1: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
2: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ

0: पानी जरूर रखें।
1: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
0: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है। बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
1: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
0: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और जो अगली फरमाइश है वो है फिल्म रफू चक्कर के गीत के लिए। वो फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, रविंद्र सिंह छाबड़ा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ से, बाल कृष्ण फगवाड़ा पंजाब से, प्रताप पांडे भिलाई छत्तीसगढ़ से, जीवन विश्वकर्मा चाईबासा झारखंड से, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, शुभचंद्र बजाज कालका से, सुभाष गोदरा फजिलका पंजाब से, हुकुम करमाकर आपने हमें ये खत भेजा है बेरड़ी मध्य प्रदेश से, सुरेश जायसवाल जमानिया जिला गाजीपुर से, मोहम्मद फारूक शेख इस गीत को सुनना चाहते हैं गणेशपुर गंजर डुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से, अब्दुल सत्तार अब्बासी मुगलपुरा बागपत से, सोहन जोशी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, ओम बागड़िया फाजिलका से, वलीला अंसारी पुराना तालाब डुमराव से, नंद कुमार ठाकुर छत्तीसगढ़ से, बबलेश पनवार गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, और टीडी मल्होत्रा इसी गीत की फरमाइश कर रहे हैं मोहाली चंडीगढ़ से। तो इस कार्यक्रम में आप सभी के नामों के साथ शामिल करते हैं आपके फरमाइशी गीत को, जिसे आवाज दी है शैलेंद्र सिंह और कंचन ने।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: तो दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा और अगली फरमाइश है फिल्म दो कलियां के गीत के लिए और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत पाकुड़ झारखंड से, बिट्टू भाटिया झज्जर हरियाणा से, शंकरलाल जायसवाल एटाला महाराष्ट्र से, तुलसीदास चुग मस्कीन चंडीगढ़ से, सोमेंद्र यादव बदायूं से, उभय भान पाल महोबा बुंदेलखंड से, सैयद यूनुस मराठवाड़ा से, रामचंद्र मखीजा छत्तीसगढ़ से, सीताराम कागड़ा शाहजी भोटके अंबेडकर चौक वाकोड़ी से, चंद्रभान रजवाड़े सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, नवी हुसैन अब्बासी हमें ये फरमाइश भेज रहे मारहरा दरवाजा एटा से, नंद किशोर घटे बीट शहर महाराष्ट्र से, धर्मेंद्र छिपा और हमें ये संदेश मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से, बाबू भाई जवाहर नगर उदयपुर से, बनवारी जयपाल श्री गंगानगर से, लक्ष्मण सिंह राजपूत इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से, मोहम्मद सईद अब्बासी चौखुंडी बुलंदशहर से, राघव बघेल पंडरिया छत्तीसगढ़ से, अनोखे लाल बरेली से, रमेश कंबोज इस गीत को सुनना चाहते हैं करनाल हरियाणा से, आर कुमार पंजाब से, के आर साहू भाटापारा से, मुकेश गोस्वामी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, अनिल जैन मलियान सरधना मेरठ से, बालकर्ण वर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद फरमान इसी गीत की फरमाइश कर रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से।

माखन वर्मा छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद यासीन गंज डुंडवारा से, राष्ट्रपाल गजबिये डोगर गांव छत्तीसगढ़ से, ज्ञान भूषण शर्मा करनाल से और देवेंद्र कुमार गुप्ता इसी गीत को सुनना चाहते हैं कस्पा उखैती से। तो आइए कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दो कलियां का ये गीत।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आइए अब सुनवाते हैं आकाशवाणी अयोध्या का ही अगला कार्यक्रम जिसका नाम है गीतांजलि।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग

0: प्लास्टिक, पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं गुलाम अली की गाई गजल के साथ।

0: आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: अयोध्या वासियों,
3: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि।

आकाशवाणी अयोध्या से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने

0: कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।

0: के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है।

0: एससी ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च

0: खत्म कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर समाचारों के बाद आपके साथ है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 एफएम बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान, महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
4: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी।
3: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
4: फोन नंबर 91-61-877-347।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: श्रोतामिनो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आप सबके मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली में। आज मैं हूं आपकी सहेली उष्मा वर्मा आपके साथ, तो स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैनो आपसे बात हो इसके लिए आपको मिलाना होगा हमारा नंबर 7376804090 7376804090। और आज का हमारा विषय है कैसे करती हैं आप जीवों की सेवा। तो बहनों ये विषय है और इस विषय पर हम इतना कहना चाहेंगे कि जो आजकल हमारे आसपास जो जीव जंतु रहते हैं, जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, हम इनकी देखभाल कैसे करते हैं, इनकी सेवा कैसे कर सकते हैं, इस पर हमें आपसे करनी है बात। बहनों गर्मी किसी से छुपी नहीं है, चटकती हुई धूप है, बढ़ता हुआ तापमान है। शासन के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है कि आप बिना काम के बाहर बिल्कुल ना निकलें। और उसके अलावा पसीने से तरबतर हम सब के चेहरे ये बता रहे हैं कि गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में बहनों जहां हम सब घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, वहीं हमारे आसपास के पेड़ पौधे पशु पक्षी मुरझाए हुए खड़े हैं और पशु पक्षी अपनी भाषा में कुछ कहने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बस ये है कि हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो बहनों आप हमें नंबर मिलाएं और हमसे बात करें और हमें लगता है कि हमारी एक बहन हमसे जुड़ना चाह रही हैं। हेलो हेलो श्रोता बहनों आप हमको मिलाते रहें, हमारा नंबर 7376804090। बहनों अब तब हम आपसे बात करेंगे और विषय आपको पता है और हमें लगता है कि हमारी बहन हमसे जुड़ना चाह रही हैं, हम इनसे बात करते हैं। हेलो
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: मैम मैं सोनाली
1: जी, अपना नाम एक बार फिर से बताएं।
2: सोनाली।
1: सोनाली?
2: यस मैम।
1: चलिए सोनाली जी आपकी पहली कॉल है हमारे कार्यक्रम में लगी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी केंद्र अयोध्या में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कोई पशु पक्षी कुछ भी आपने अपने घर में पाल रखा है या नहीं?
2: जी मैम हमारे यहाँ मतलब कुत्ता है।
1: अच्छा जी, तो सबसे पहले तो अब यही बताएं कि जो ये आपने आपके घर में कुत्ता है ये आपने कहीं से खरीदा है या आपके आसपास जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनमें से है?
2: मैम वैसे लेकर आए थे चाचा जी।
1: मतलब खरीदा तो नहीं है ना?
2: जी मैम
1: खरीद कर लाए थे कि आप आसपास से कहीं से ले आए थे?
2: नहीं मैम दोस्त से आया है, लेकर आए हैं कहीं।
1: अच्छा देखिए हम बात जानवरों की हो रही है, उनके सेवा की हो रही है, आप उसकी देखभाल कैसे करती हैं?
2: जी मैं उसे पानी वानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। और
1: आपने उसे इंजेक्शन लगवाया है? टीकाकरण उसका होता है तो क्या आपने कभी कराया है ऐसा?
2: जी मैम
1: जैसे जानवर जो हम पालते हैं उनको हम इंजेक्शन लगवाते हैं डॉक्टर के यहाँ जा करके कि ताकि वो किसी को काटे तो उसका असर ना हो और वो खुद भी स्वस्थ रहें, तो क्या आपने कभी उसको इंजेक्शन लगवाया है कि नहीं लगवाया?
2: जी मैं अभी कभी।
1: अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा करना जरूरी होता है और आप जरूर करिएगा। एक बात आपकी अच्छी लगी, अगर आपने इस डॉग को कहीं ऐसे ले लिया है अपने अड़ोस पड़ोस से या किसी रिश्तेदार से ले लिया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए लोग शौक में पैसा खर्च करके जो है वो जानवरों को लेते हैं, उससे कहीं अच्छा है कि जो हमारे आस पास के जानवर है ना उनको हम पालतू बना लें, है ना? तो
2: yes,
1: हाँ सोनाली जी आपने अगर ऐसा किया है तो आपको बहुत बहुत इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई है, आपने बहुत अच्छा काम किया है और फिर मुझे कॉल जरूर करिएगा और कॉल करने के लिए आपको थैंक यू। श्रोता बहनों हम बात कर रहे हैं पालतू जो पशु पक्षी हैं या जानवर हैं और हमें लग रहा है कि हमारी दूसरी बहन जो है वो भी कॉल पर है, हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं ये क्या बात करना चाहती हैं हमसे। हेलो

0: हेलो हेलो श्रोता बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल नहीं मिल पाती है या आपसे बात नहीं हो पाती है, लेकिन आप हमसे बात करते रहें, आप मिलाते रहें और बात ज़रूर होगी, क्योंकि देखिए अभी एक कॉल आई और आपसे बात हुई। हेलो
1: हेलो,
0: जी,
1: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैम
0: प्रणीता बोल रही हैं?
1: अनीता
0: बहुत प्यारा सा नाम है, मुझे लगता है बहुत छोटी हैं क्या?
1: बोल रही
0: हाँ
1: हूँ। ठीक हो मैम?
0: हाँ हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप ठीक हैं?
1: हाँ जी।
0: ये आपने कोई कोई जानवर पाल रखा है? गाय है आपके घर में? गाय, भैंस?
1: नहीं है,
0: नहीं है। और
1: नहीं, मर
0: मर गई? अरे
1: गई
0: चलिए, आपने
1: गाय। दूध नहीं मिल रही है पीने
0: जी,
1: को। जी
0: देखिए भाई, ये कॉल लगी थी लेकिन मुझे लग रहा है कि कट हो चुकी है। श्रोता बहनों, हम आज बात कर रहे हैं कि हम अपने पशु पक्षी या जानवरों की देखभाल कैसे करें। हम बात करते हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: हेलो,
0: जी, आप कहाँ से बोल रही हैं?
2: हम बोल रहे हैं कौशलपुरी।
0: कौशलपुरी से। आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम श्रद्धा सिंह।
0: श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि विषय आपको पता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास कोई पालतू पशु है?
2: नहीं,
0: पशु
2: मेरे
0: पक्षी?
2: पास पालतू पशु तो नहीं है, लेकिन जो ये कुत्ते होते हैं
0: जी,
2: बाहर, उनको एक आध को मैं रोज ब्रेड खिलाती हूँ।
0: बहुत अच्छा। और
2: दस
0: देख
2: रुपए का रोज ब्रेड खिलाती हूँ।
0: जी
2: और जो ये प्लास्टिक की डलिया नहीं होती टूटी हुई,
0: हाँ,
2: उसके ऊपर मैंने पन्नी बिछाया। पन्नी बिछाने के बाद मैंने सीमेंटेड प्लास्टिक की डलिया बनाई।
0: अरे वाह
2: जब वो डलिया ठीक हो गई
0: जी,
2: तो उसको धो के मैंने अच्छे से उसमें पानी भर दिया।
0: वाह
2: अब वो जानवर जितने आते हैं, कुत्ते हैं,
0: जी,
2: बिल्ली है या गैया है, जो भी आते सब उसमें पानी।
0: बहुत अच्छा।
2: गोरैया है।
0: देखिए, एक बड़ा क्रिएटिव सा कार्य आपने किया है, और हमारी जो श्रोता बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं, और मुझे लगता है कि वो सभी के पास टूटी डलियां होंगी और वो एक बार ट्राई करेंगी आपकी बात सुनकर, है ना? तो
2: टूटी हुई डलिया है,
0: जी जी जी जी
2: उसी से
0: जी
2: हमने पन्नी बिछाया। पन्नी बिछाने के बाद थोड़ा सा मोरंग बालू से तो जो भी अवेलेबल हो,
0: जी जी जी
2: उसके ऊपर एक टूटी की डलिया बना के
0: जी
2: मैंने सीमेंटेड और उसमें पानी भर दिया।
0: जी
2: वो आराम से पी रहे, ज्यादा खर्चा भी नहीं लगा, मेहनत भी नहीं हुई, टेंशन भी नहीं।
0: बहुत
2: अब
0: अच्छी,
2: उसको न बंदर खिस्सा पाता है न कोई जानवर पाता है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। और हमारी श्रोता बहनों से आप क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है।
2: मैं तो श्रोता बहनों से यही कहूँगी कि जो घर की चीज है बेस्ट,
0: जी
2: उसको
0: जी
2: कैसे बेस्ट बनाए।
0: जी
2: मतलब जो मेरी बात आपको समझ
0: जी जी
2: जो घर बेकार की चीजें हैं उसको कैसे बेस्ट बनाए।
0: जी बहुत,
2: जैसे कभी आप लोगों के नारियल आता होगा उसको तोड़, नहीं प्लास्टिक के जो चौड़े मुंह के डिब्बे हो
0: जी जी
2: वो थोड़े से बालू में डाल दे, छोटे छोटे डिब्बे,
0: जी जी जी
2: शाम को जब टहले पार्क में छत के ऊपर उसमें पानी भर दे, रात भर गौरैया पे।
0: जी, और एक चीज और कहेंगे कि ये जो पानी रखना है, ये पानी कहीं छांव में रखें, क्योंकि जो कड़कती हुई धूप है आजकल, अगर उसमें ऐसे कहीं खुले में पानी कहीं भी रख देंगे तो वो पानी बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, और मुझे लगता है कि जैसे हमें ठंडे पानी की जरूरत है, वैसे सभी को।
2: तो सुबह 5 बजे तक खूब गौरैया पानी भी पीती है
0: जी,
2: अनाज डाल दे तो गौरैया 5-6 बजे 7 बजे तक पानी।
0: जी जी, तो बहुत बहुत देखिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। श्रोता बहनों, बहुत सारे जागरूक लोग भी हैं हमारे आसपास, लेकिन जिनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है, हमें ये बातें वहां तक पहुंचानी हैं। और हमें लगता है कि हमारी एक बहन हमसे और जुड़ना चाह रही है, हमें से बात। हेलो जी,
3: हेलो
0: जी जी जी
3: जी मैम
0: नमस्कार।
3: नमस्कार,
0: कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: हम बात से बोल रही हूँ।
0: हाँ, आपका शुभ नाम क्या?

0: आकृति।
1: आकृति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम लोग आज बात कर रहे हैं कि कैसे हमें जीवों की सेवा कैसे करनी चाहिए।
0: यस मैम।
1: तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि आजकल बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि जो लोग अपने पशु पक्षियों को बिल्कुल हमारे घर में उनका आना जाना तक बंद हो जाए उसके लिए वो करंट दौड़ा देते हैं।
0: Yes,
1: उसके तार लगवाते हैं अपने घर के चारों तरफ, है ना?
0: Yes, ma'am.
1: तो कि वो बिल्कुल आपके घर में ही ना आ पाए, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैम, जीवों पशु पक्षी की सेवा निस्वार्थ भाव, दया और प्रेम से करनी चाहिए। उन्हें यूं बगाना नहीं चाहिए। इससे भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, बीमारों की देखभाल और बेजुबानों के प्रति करुणा दिखाकर साकार किया जाता है।
1: जी, तो ऐसे लोग, मतलब जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए आप कुछ कहें?
0: हम देखिए, मैं तो यही कहूंगी, जैसे कि मैंने बताया, भूखों को भोजन, प्यासों को पानी और बीमारों की देखभाल और बेजुबानों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। तो हम, मेरे ख्याल से इससे बहुत ही निगेटिव नकारात्मक कार्य है। ऐसा करने से जानवरों को भी चोट पहुंचती है, भगवान भी हमसे नाराज होते हैं, जिनकी मदद करने के बजाय हमने उनसे जो है उनका सुख छीन लिया।
1: हाँ बिल्कुल, इसी संवेदना को हमें जागृत करना है। और आकृति जी, आपने हमें कॉल की, इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोता बहनों, हम सभी की कल्पना होती है कि हम पशु पक्षियों के जैसे काश उड़ पाते, और ऐसी कल्पना के साथ हम एक गीत सुनते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन को छूने में कामयाब होगा।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: श्रोता बहनों, बात हो रही है हमसे, हम आपसे बातें कर रहे हैं, आप हमें कॉल करिए और आपसे बात करनी है हमें कि जीव जंतुओं की सेवा हम कैसे करें और कैसे उनकी देखभाल के लिए हम तत्पर रहें। बहनों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और हेलो
5: हेलो, नमस्ते मैम, मैं अनुपांडे बात कर रही हूँ, गोंडा
4: जी। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अनु जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके आसपास कोई जीव जंतु ऐसा हो जो चोट खाया हो, बीमार हो, कभी आपने उसकी मदद की हो?
5: हाँ, हमारे पास में एक बार ऐसा हुआ था, एक डॉग बीमार था तो हम लोगों ने उसका इलाज करवाया था
4: जी,
5: और वो अच्छा भी हो गया था।
4: बहुत अच्छी बात है। क्या कभी ऐसा
5: हमारे पास तो डॉग ही नहीं था
4: जी। अच्छा अच्छा, यानी आपके यहाँ आता जाता था या ऐसे ही?
5: मतलब ऐसे ही आ गया था, तो बीमार था, फिर वो बीमार हो गया तो हम लोगों ने उसका इलाज करवाया।
4: बिल्कुल, देखिए इसी संवेदना के लिए कि लोग जागरूक हों कि हम ऐसे जिनको पालते हैं उनको, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपने घरों में और उसी सुख सुविधा के साथ रखते हैं जिस जैसे वो खुद रहते हैं, लेकिन जो सड़क पर जो जीव जंतु चलते हैं या पशु पक्षी जो होते हैं उनके लिए कोई बहुत ध्यान नहीं देता है। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है ना, ये ऐसे लोगों के लिए है जो कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग सड़क पे जाते रहते हैं ना, तो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि जो चोट खाए हैं, लंगड़ा रहे हैं, खून से लथपथ हैं, लेकिन हम बगल से गुजर जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए
5: जानवर हमारे यहाँ, मतलब एक जानवर था तो उसको कहीं से तार वगैरह लग गए थे
4: जी,
5: उसको बहुत चोट लगी थी
4: जी,
5: और वो काफी घायल था, और मतलब कि वो मतलब बहुत हल्की था बहुत ज्यादा, पर वो इतना मतलब घायल हो गया था कि एकदम से बुझा बुझा था, लेकिन हम लोगों ने उसका इलाज किया और प्रॉपर इलाज करने के बाद वो एकदम से अच्छा हो गया। कहा सब लोग कह रहे थे ये तो बचेगा नहीं किसी भी हाल में, कहा सब लोग एकदम से देख कर दंग रह गए, अरे इतना जल्दी कैसे अच्छा हो गया। और एक बात में हम लोगों को जानवरों से बहुत लगाव है
4: जी,
5: और हमारे यहाँ ना ढेर सारे जानवर खुद के भी है।
4: बहुत अच्छी बात है, और अनु जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज में आप ही
5: की ना
4: जी,
5: जी मैं पूछिए।
4: हाँ हाँ, आप बताइए।
5: मुझे ना पक्षियों से बहुत लगाव है, मैं कोई पक्षी देखती हूँ तो उसको दाना देती हूँ, पानी देती हूँ, इतनी बड़ी हो गई उसके पीछे लग जाती हूँ, तो जो मेरी सिस्टर लोग हैं वो हंसती है, कहती है अभी भी लगता है छोटी सी बच्ची होती पीछे पीछे लगी हो।
4: बिल्कुल,
5: जैसे देखा है कबूतर आया था तो वो थोड़ा मुझे लगा बीमार है, तो पहले मैंने उसको धीरे धीरे उसके पास जाके उसको चावल दिया खाने के लिए, फिर वो खाने लगा, तो फिर मैंने धीरे धीरे से उसके पास पानी लेने की कोशिश कर रही थी, सिस्टर कर रही है क्यों परेशान कर रही हो, अभी भी छोटी सी
4: अनु जी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप चाहे जितने बड़े हो जाइए ना, आप बूढ़े भी

0: हो जाइए। देखिए, हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो किसी को भी, किसी अपरिचित व्यक्ति को भी अपने घर में आश्रय देते थे, और जीव जंतु पशु पक्षियों को वो उतना ही सम्मान देते थे, उतने ही उसके साथ फ्रेंडली रहते थे जितना हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो आप बड़े हो जाइए ना, फिर भी अपनी ये संवेदना जीवित रखिएगा और आप ऐसे ही अच्छी बने रहिएगा।
1: मेरी ना बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव है, तो मैं उनके पीछे पीछे लग जाती हूँ उनको देखने के लिए, इधर उधर उनको चारा देने के लिए। तो वही सिस्टर लोग बोलती है, एकदम नन्हे बच्चों की तरह पीछे पीछे लगी रहती है, जहाँ जाएगी वहाँ जाना।
0: बिल्कुल, तो बहुत अच्छा अनु जी आपसे बात करके, और आप ऐसे ही रहिएगा जैसे आज हैं। थैंक यू। श्रोता बहनों, जब हम पालतू पशुओं की बात करते हैं या पक्षियों की बात करते हैं, तो हम लोग जब भी इस तरह की हमारी कहीं हमारे आसपास ऐसी कोई घटना घटे, और हमारी बहन हमसे जुड़ना चाह रही हैं, बात करते हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? नमस्ते, कहाँ से बोल रही?
2: हम बदायूं से बोल रहे हैं
0: जी।
2: बदायूं से
0: जी, आपका शुभ नाम क्या है?
2: संगीता।
0: संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज हमारी बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने घर में क्या ऐसा कर रखा है किसी भी जीव जंतु के लिए, आपने कोई व्यवस्था करी है?
2: मैम, घर पे एक गाय भैंस पड़ रही है
0: जी।
2: घर पे एक गाय है, एक भैंस है
0: जी। तो उसकी
2: दोनों टाइम नहलाना, टाइम पे खाना देना, उनको चारा देना लाके हरा
0: जी, बहुत अच्छा है।
2: सुबह टाइम उसका देखभाल करना।
0: हाँ, और गर्मी का दिन है तो हम ये कहेंगे कि उसको आप और अधिक देखभाल करिए, बीच बीच में देखते रहिए। कभी कभी देखिए, जो जानवर होते हैं ना, वो भी हाँफने लगते हैं गर्मी से, तो उनको देख के पता चल जाता है ना।
2: आम का नीम का पेड़ है, उसके नीचे बैठे हैं।
0: अच्छा,
2: आम का नीम का पेड़ लगा रखे हैं, वो बड़े हो गए हैं, उनको भी सुबह कम पानी देना
0: जी। तो बहुत अच्छा आपने मतलब पाल रखा है। आजकल तो जीव ऐसे पालतू पशुओं को रखना भी बहुत आसान नहीं है, और आप उनको रखी हैं, अच्छे से देखभाल करती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता बहनों, जब हमारे आसपास कोई घटना घटे, या कहीं आप घायल पशु पक्षियों को देखें, या कभी जानवर कोई चोट खाया हो, तो हर जिले में जो है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, उन पर जो है उनको आप कॉल कर सकते हैं, उनको आप बुला सकते हैं, और हर जो शहर में एक एम्बुलेंस की जानवरों के लिए एक अलग से सुविधा होती है। तो चूंकि अलग अलग शहर में अलग अलग होती है, इसलिए आप जरा सा भी अगर उसको जानने की कोशिश करेंगे तो आपको उसकी जानकारी हो जाएगी, और आप जब कभी देखें या रास्ते में कहीं रहें तो आप जो है वो उस पर सूचित करें। और श्रोता बहनों, हमारा कार्यक्रम जो है आप आज का हमारा साथ यहीं था, और अभी थोड़ी थोड़ी बातें आपसे बाकी हैं, और एक संदेश हम सुनते हैं।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: हेलो हेलो
4: हेलो
0: जी,
4: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं आप?
4: मैम, रायपुर, अयोध्या से।
0: रायपुर से, आपका नाम क्या है?
4: अयोध्या
0: जी,
4: सोनम
0: जी
4: नाम है।
0: अच्छा सोनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप जो हमारे पशु पक्षी हैं, इनके लिए कुछ आपने व्यवस्था अलग से कर रखी है?
4: नहीं मैम, ऐसे तो मेरे यहाँ कोई है नहीं, गाय वाय बकरे गई है नहीं। चाची है बगल में, इनसे बात कर लो, इनके यहाँ है।
0: अच्छा, देखिए आपसे भी बात हो सकती है, क्योंकि चाची तो जानवर रखी हुई है ना, तो वो तो उसकी देखभाल करती होंगी, है ना?
4: हाँ मैम, जानवर रहते हैं तो करते हैं। हाँ, नहीं करेंगे।
0: देखिए एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी, चूंकि बात आपसे हो रही है, हम लोग जो घर की पॉलीथिन्स होती हैं, है ना, जो प्लास्टिक होती है, जो थैलियां होती हैं, हम उनमें कूड़ा या बचा हुआ खाना ये सब जो है ले जाकर के बाहर रख देते हैं, है ना?
4: नहीं मैम, ऐसा नहीं करना चाहिए उसे।

0: भाई को भाई उसको दे दें, खा ले,
1: हाँ
0: इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए ना,
1: उसको दे दिया। और दूसरी चीज कि हम पॉलीथिन के अंदर रख करके वो डाल देते हैं,
0: हाँ,
1: तो जो गाय
0: तो
1: बाय
0: मतलब
1: होती
0: नहीं है वैसे रहती है पॉलीथिन,
1: हाँ, और उसको वो तो जो जानवर खाते हैं ना तो पॉलीथिन सहित खा जाते हैं।
0: हाँ जी मैम,
1: है ना, तो वो उनके लिए पेट में जा करके उनके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो इस तरह से
0: हाँ,
1: जो हम
0: हाँ,
1: खाना रखते हैं, और दूसरी चीज की देखिए गर्मी बढ़ रही है तो इस गर्मी में उन्हें बासी खाना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गांव में क्या होता है कि जो भी खाना बचता है उसको हम एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं और फिर वो जानवर के को जिसमें जिस नाद में हम पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसी में डाल देते हैं, है ना। तो
0: जी
1: चूंकि
0: मैम, जैसे गाय वाय है उसी में डाल दें, यहाँ वहाँ न रखें, मतलब बासी खाना जो रहता है।
1: हाँ, लेकिन देखिए अब जो बासी खाना जिसकी बात हम कर रहे हैं वो खाना भी आजकल इतनी गर्मी में वो जानवरों के लिए भी सुरक्षित नहीं है,
0: हाँ, जानवर के लिए भी नुकसान है
1: नुकसान
0: गर्मी
1: है
0: में।
1: जी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करें। जो लोग हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उसको बासी खाना समझ के कि वो जानवरों के लिए उपयुक्त है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो गर्मी पड़ रही है वो किसी के लिए है ना।
0: जी मैम, सही कह रहे हैं आप, जैसे इंसान को नुकसान करेगा तो जानवर को भी तो नुकसान करेगा।
1: यही कहना चाह रहे हैं कि आजकल हम ऐसा सोच रहे हैं कि बासी खाना जानवर को दे देना है, लेकिन इस समय नहीं देना है, है ना।
0: जैसे है तो बच्चे तो उसी समय दे दे, वो भी खा ले,
1: हाँ बहुत अच्छा,
0: ही
1: बिल्कुल
0: ताजा ही खाना खिला दे।
1: हाँ बिल्कुल, जैसे शाम को आपका खाना बच गया है ना तो उसी समय रख दीजिए।
0: हाँ उसी समय दे दे कि खा ले जो बच्चे
1: जी,
0: और रखेंगे तो जानवर के लिए भी नुकसान करेगी ना।
1: हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की।
0: खाना दे रहे,
1: और देखिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आप फिर हमें कॉल जरूर करिएगा, ठीक है जी। श्रोता बहनों, जब हम पशुओं की जानवरों की बात करते हैं तो हम जो हमारे जो पालतू पशु होते हैं इनकी देखभाल के अलावा जो हमारे बिना पाले हुए जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या जो घुमंतू पशु होते हैं उनकी उनका हम ध्यान रखें, और ख़ास करके गर्मी के दिन में उनकी पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। और बहनों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो ऊष्मा वर्मा को अनुमति दें, नमस्कार।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर। और आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मन पसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये, कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता, जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पमार, डेनी पमार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसिखर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विग्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी है और संगीतकार मदन मोहन है।
1: तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनोजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजे, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अति सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु

0: यूं ही नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता। चोड़ावत जी,
1: महाराणा
0: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
1: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्य को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है, वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
0: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
2: जी महाराज,
0: राणा हाड़ा को ये शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी,
3: जी महाराणा,
0: सामन चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
3: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगी तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलावनी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ ऐसे,
2: यहाँ यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
2: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
2: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
2: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
2: इसके सिवा और मैं मांगी क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधुयामिनी है ना?
2: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ
2: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
2: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन
2: जी,
0: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
2: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हरी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
2: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे।

0: और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है! आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं।
1: दीदी,
0: कौन?
1: स्वागत है।
0: ओह आप यहाँ?
1: हाँ जी, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
0: ना, हाँ ना,
1: अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
0: स्वामी मेरे देवता,
1: सच
0: मैं तुम्हारी पुजारी।
2: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
1: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो,
2: नगर की
1: चंद्रमुखी तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया।
0: स्वामी
1: कमल के कोमल संपुट में बंद भ्रमर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
0: सुना आपने?
1: इधर
0: स्वामी।
1: प्रिय
0: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
1: प्रिय मुझसे क्या अपराध हो गया जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई?
0: स्वामी सुनिए नगाड़ी की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
1: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
0: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
1: प्रियतम मैं
0: प्रियतम
1: मैं
0: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
1: प्रिय जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो, विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका, सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएगी।
0: स्वामी यह केवल आपका मोह और वासना है।
1: रानी
0: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
1: रानी
0: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
1: हाँ रानी मैं विचलित हो रहा हूँ, मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी न हुई।

0: क्या करूं?
1: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठी और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो,
1: आप इस पुष्प शैया पर बैठकर अपने घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती हूँ।
0: ठहरो रानी,
1: ये हर अंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो, रानी सुनो तुम।
1: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर ये कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी वीरता के केश पुष्पों की सुगंध में मधोर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं, नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बालक के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
0: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
1: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तलब कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
0: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो, मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
1: नाना,
0: तो तुम्हारा ये रूप यौवन।
1: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
0: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
1: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी अब

0: मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: महारानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, देख तो कोई आ रहा।

0: रण सिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
0: रण सिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
0: रण सिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हार जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रण सिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को ना दी होगी। विजय मार। तारा, तारा।
2: आई आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
0: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
2: ये क्या कर रही है?
0: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर तारा।
2: रानी जी, रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली
0: रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है। ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शेष रूप एक पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बस, अब बहुत विलंब हो रहा है। जल्दी कर ला कृपाण। रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना। और कहना,

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख ले और सामन तक शीघ्र पहुंचा दे।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल?

0: धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
1: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सोचता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करो।
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
1: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
1: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
1: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
1: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
1: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रणसिंह, ये क्या राय हो? हमारी रानी का भंग ऋषि, ये क्या किया तुमने रणसिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
2: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
1: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो,
3: विजय हमारी है।
2: मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी। मैं जाता हूं।

Chica, ¿verdad?

0: हे दामन।
1: रानी जी कहाँ हैं? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
0: दामन, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
2: रानी, मेरी हरी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था, लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं।

0: तो तभी मैंने सोचा था कि मैं बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
1: अरे
0: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है, और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था, देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत से लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन भी था, और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे, और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे एक दो घंटे, और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे, और कई दफा लोग हमसे रिलेटेड भी होते थे कि बच्चे बहुत ज्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, 8-10 हज़ार रुपए उधर से आए, तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
1: अरे वाह।
0: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। हाँ। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था, तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को, ये गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास से बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
1: चबूतरे में हुआ,
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया, और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पिताजी भी किसान है, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
1: ओके।
0: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर।
1: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजा औरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजा औरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
1: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
0: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक भागे होती थी।
1: हाँ।
0: तो उसी तरह से कि कहां ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहां ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहाँ ले आए,
1: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है ना,
0: कहाँ ले आए राजा कुमारिया में,
1: मतलब बुंदेलखंड,
0: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि, बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं।
1: हाँ।
0: जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो मजा आ गया मुझे,
0: बहुत ही मजा, बहुत मजा। तो यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव। तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा।
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे

0: मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता था उस समय,
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे लाइक।
1: तो बुंदेली में था ये?
0: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा, तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ कि खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान,
1: जो कि
0: काफी बड़े एक्टर
1: हैं, पन्ना के ही हैं,
0: जो पन्ना के ही हैं। तो वो NSD से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, फाइव स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला दो दो किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चलनी है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहां पे 1 महीने रहना है। तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं वो, क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मुझे ये करना है, अब मैं कहाँ सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है,
1: तो डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख लिया था, अभी मुझे पहुंचना है NSD। तो फिर वहां
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी,
1: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी जी,
1: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गाँव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम।

0: अरे फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए,
1: क्या बात है।
0: तो ये कुछ कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके।
0: जी जी जी, हमने बहुत देखा है फिल्म को,
1: वाह
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: क्या
0: भी सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है। एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी जिससे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया। फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कह रही अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा। मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
0: वो छोटा वाला
1: फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस
1: रिकॉर्ड कर दो, मेरे पास में इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए,
0: एक मिनट में सब
1: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो मैं कॉलेज में इस शहर में था,
1: छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सक्सेना का नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हेमंत भाई,
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत लड़के कभी
0: बिल्कुल बिल्कुल विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर है वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं MA के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में

0: किसी को जानता नहीं और मैं वैसे ही जा रहा हूँ, मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
1: बिल्कुल,
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपको फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे,
0: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दरा के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले। अच्छा। और उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने गाना गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं ऐसा कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपके लिए सिर्फ साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई उस महफिल में, सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतरिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मिला जाने,
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनका आके तिनगाने,
1: वाह वाह,
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई और

0: कंधे पे बैठा के पूरो मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने,
1: सद्दम
0: मुका मेला जाए,
1: कहते हैं देवेंद्र
0: के बचपन। उस समय ये बुंदेलखंडी कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस खाना हो गया,
0: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक मुझे वो करने को मिला, मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नी, मुझे सिखाते थे ले लो नी ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, यार मैं समझ नहीं आता मैं वही तो बोलता हूँ, फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीजों के लिए, काफी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNM अवार्ड ही है वो, और मेरे गुरु है, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी, और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहां पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है, पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने की शुरू किए, क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना
0: तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई

0: बंदा परफॉर्म करेगा, तो मैंने कहा हाँ तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। अगले
1: को यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है, एक गाना सुनते हैं उसके बाद ये दास्तान सुनेंगे। तो बताओ यहाँ कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना है,
1: बहुत
0: ही सुंदर गाना है, बहुत सुंदर गाना है।

0: गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा, तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके।

0: मेहनत करके भाग्य जगा ले, तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
1: म्यूजिक का सिलसिला
0: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
1: अच्छा,
0: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है।
1: वो तो छूटे नहीं है,
0: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
1: अरे
0: मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
1: ओके,
0: और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया
1: और वहीं वो
0: धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
1: मिले धुरंधर जी
0: उस समय तक थे धुरंधर जी, पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
1: हाँ।
0: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे। वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग जैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहाँ पे गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
1: जी।
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म। मेरी भाषा इतनी खराब थी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि
1: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये बहुत
0: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था। शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था, तो लोग हंसते थे, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
1: हाँ।
0: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके। मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा मैं गलत बोलता था,
1: शक को साफ बोल रहे हो,
0: हमेशा बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजेश जोशी की बहुत पॉपुलर कविता, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
1: हाँ।
0: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना।
1: हाँ।
0: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे।
1: हाँ।
0: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था। शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोला था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके।
0: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनर्जी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनर्जी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरुद्ध खुटवर सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2.5 घंटे के नाटक में 1.5 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनेज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया और उस समय मुझे सामने आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से

0: बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन करते हो, तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
0: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल
0: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया,
1: मुखौटा।
0: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजन लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
1: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था उसके 1000 लोग देखते थे और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक की, वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए बोल में मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बंबई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था डायरेक्टर का और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था 12 बजे के आसपास, एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना बोल रहा हूँ, सर कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंच रहे, सुनाई देना बंद हो गया मुझे। मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
1: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहाँ हर हाल में पहुंचना है जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस जो मैंने ही लिखा था और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: अच्छा।
0: वो क्योंकि रेडियो को बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है ऐसे करके, उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: उसका एक गाना सुनाओ यार,
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको,
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ।

0: उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है. मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से. अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती. उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के
1: बदल दी,
0: बदल दी. उस पर एक कहानी है. हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है. एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है. अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है,
1: क्या कर
0: तो वो
1: है?
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है. तो वो कहानी है. अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गाँव से निकल के कहाँ कहाँ पहुंचता है, उसकी कहानी है. सो गाना है.

0: लगा है।
1: क्या बढ़िया गाना
0: जी जी।
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं। और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं। तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जांपल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
0: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी, जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा। अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है बहुत। मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंदर उसमें काम कर रहे थे हमारे गुरु जी।

0: सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार। और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतमान है एक रेडियो में,
1: बिल्कुल।
0: और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कैसे कहूँ जैसे गाने मैंने सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में। और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके। और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंद दादा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता

केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आपका आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारे युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में हार्दिक स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त दिशा पांडे और अगले 30 मिनट तक हम साथ रहेंगे ढेर सारी बातों, जानकारी और मनोरंजन के रंगों के साथ। आज के कार्यक्रम में होगी खास चर्चा योग और हमारा स्वास्थ्य पर, साथ ही जानेंगे मिशन लाइफ के तहत स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसके बाद हमारे विशेष सेगमेंट हमारी धरोहर में बात करेंगे राजस्थान के अद्भुत पहाड़ी किलों की, फिर सुनेंगे छात्रा शुभ्रा शुक्ला की आवाज में एक काव्य पाठ, और कार्यक्रम के अगले पड़ाव आर्थिक जगत में समझेंगे अवस्फीति और अपस्फीति क्या होती है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी रोचक जानकारियों के बीच सुनते रहिएगा कुछ मधुर गीत संगीत हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सफर की सेगमेंट चर्चा से। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव, चिंता या फिर भागदौड़ से घिरा हुआ है। सुबह से लेकर रात तक हम मोबाइल, लैपटॉप, पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच इतने उलझ जाते हैं कि अपने शरीर और मन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, है ना। परिणाम स्वरूप थकान, तनाव, अनिद्रा, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और मानसिक अशांति जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में यदि कोई चीज हमें शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रखने का सबसे सरल उपाय देती है तो वो है क्या? योग। जी हाँ, वो है योग। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना, यानी शरीर, मन और आत्मा का आपस में संतुलन स्थापित करना। दोस्तों, योग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में आसानी से अपना सकता है। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट योग करने से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहने लगता है। दोस्तों, यदि हम सुबह की शुरुआत योग से करें तो पूरा दिन ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाता है। जी हाँ, आज के युवा अक्सर मानसिक दबाव और प्रतियोगिता के कारण चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। योग हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी मन को कैसे शांत और नियंत्रित रखा जाए। दोस्तों, कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने ये महसूस किया था कि मजबूत इम्यूनिटी और मानसिक संतुलन कितना जरूरी है। आपने भी किया ही रहा होगा। उस समय योग और प्राणायाम ने लाखों लोगों को स्वस्थ रहने में मदद की थी। भारत की इस प्राचीन परंपरा को आज पूरा विश्व अपना रहा है। हर वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि योग, जो कि भारत

की धरोहर है, आज वैश्विक पहचान बन चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं मिशन लाइफ की। इस आयोजन में 7 विषयों की प्रस्तुति किया गया है, जिसमें से एक है स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। इस विषय पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे समय में मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस अभियान का उद्देश्य है ऐसी आदतें अपनाना जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी हों, जैसे समय पर सोना और उठना, नियमित योग और व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन लेना, पानी और बिजली की बचत करना तथा प्लास्टिक का कम उपयोग करना। दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाती है। जब हम प्रकृति के करीब रहते हैं और अनुशासित दिनचर्या अपनाते हैं तो तनाव भी कम होता है और जीवन में सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को मिशन लाइफ अपनाना चाहिए। हम सभी मिशन लाइफ को अपनाएं और स्वस्थ, जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिक बने। अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा फिल्म सोल्जर से। आवाज है जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की।

0: जी आप ये सुन रहे थे प्यारा सा गीत, फिल्म सोल्जर से आवाज थी जसपिंदर नरूला की और सोनू निगम की, लिरिक्स थे समीर के और कंपोज किया था अनु मलिक ने। अब आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं फौरन आपके लिए।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
3: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
2: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
3: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
2: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
3: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
0: दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है आपका युवाणी के खास सेगमेंट हमारी धरोहर में। दोस्तों भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और अद्भुत स्थापत्य कला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उन शानदार पहाड़ी किलों की जो वीरता, शौर्य और गौरवशाली इतिहास की अमर पहचान है। तो आइए चलते हैं राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों की ओर। राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों यहाँ बने विशाल किले आज भी राजपूताना शौर्य की गाथा सुनाते हैं। इनमें प्रमुख है चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, आमेर किला, रणथंबोर किला, गागरोज किला और जैसलमेर किला। इन किलों की खास बात यह है कि ये ऊंची पहाड़ियों पर बनाए गए थे ताकि दुश्मनों से सुरक्षा मिल सके। मजबूत दीवारें, विशाल द्वार, सुंदर महल और मंदिर उस समय की अद्भुत वास्तुकला को दर्शाते हैं। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का सबसे बड़ा किला माना जाता है। दोस्तों ये रानी पद्मिनी, महाराणा प्रताप और राजपूत वीरता की अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है। वहीं कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल दीवार के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत के ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। दोस्तों ये किला केवल पत्थरों की इमारतें नहीं है बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और साहस की अमूल्य धरोहर है। जी हाँ, इसी महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने राजस्थान के कई पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। आज ये किले देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों इतिहास और संस्कृति के इस

0: प्यारे से सफर के बाद अब समय है कार्यक्रम के अगले रंग का। अब हम सुनेंगे काव्य पाठ छात्रा शुभ्रा शुक्ला की आवाज में।
1: मेरी रचना का शीर्षक है योग। तन मोड़ना नहीं केवल योग आत्म संगीत है, अंतर मन के अंधकार में शांति का एक दीप है। जीवन में यदि शोर मचे तो योग ही मौन सिखाता है, थके हुए मस्तिष्क को योग जीवन जीना सिखलाता है। ये सिर्फ आसनों का क्रम नहीं, ये स्वस्थ तन की यात्रा है, जहाँ सता से मिलने की अपनी अद्भुत परिभाषा है। सांसों का शांत सौम्य चलना, मन निर्मल निश्चल होता है, मुक्त हुआ मन भय क्रोधों से चिंता का पल टल जाता है। तन स्वस्थ हुआ मन स्थिर है, विचारों में उजियारा है। हर मानव के जीवन में योग एक नया सवेरा है, हर मानव के जीवन में योग एक नया सवेरा है। मेरी अगली रचना का शीर्षक है पर्यावरण। गुमसुम सी भूधरा है अपनी, खामोशी में दर्द बहुत है, वन कटने की चीखे हैं, सूखी नदियों का मौन बहुत है। शुद्ध समीर जो बहती पहले, धुएं में अब जहर बह रहा, मत काटो वृक्षों को ऐसे, पर्यावरण नष्ट हो रहा। मिट्टी से पाया जन्म इन्होंने, इंसानों से भय लगता है, पेड़ों की शाखें पूछ रही क्या यही हमारा नाता है। नदियां रो कर कहती हैं क्यों छीना अस्तित्व हमारा, पशु पक्षी गण क्यों अब ऐसे घूम रहे हैं बिना सहारा। पर्यावरण कोई वस्तु नहीं, ये अमोल निधि है कलयुग की, पेड़ लगाओ ऑक्सीजन बढ़ाओ, रक्षा करो जरा इनकी। जिस दिन आखिरी पेड़ कटेगा उस दिन समझ आ जाएगा, भले हाथ में पैसे हो कोई सांस नहीं ले पाएगा, भले हाथ में पैसे हो कोई सांस नहीं खरीद पाएगा। मेरी अगली रचना का शीर्षक है माँ।

कर दूंगी। मेरी अगली रचना का शीर्षक है सफलता। इन जलती हुई मसालों को बुझने का अवसर मत देना, उन भूली बिसरी बातों को उठने का अवसर मत देना। जो लोग हुए हैं अपने अब वे लोग पर आए होंगे, जीवन की मधुमय घड़ियों को खोने का अवसर मत देना। यदि लक्ष्य को पाना है तुमको तो आगे बढ़ते रहना तुम, जग के लोगों के कट वचनों को हंसते हंसते सहना तुम। इन लोगों के कट वचनों को पुनः कहने का अवसर मत देना, इन जलती हुई मसालों को बुझने का अवसर मत देना। जीवन में आगे बढ़ना है तो चुप रहना ही अच्छा है, यदि चुप न रहे तो इस जग से फिर धागा तुम्हारा कच्चा है। यदि मेहनत कोई करता है, यदि सफल नहीं वह होता है, कितने तानों

0: अनवरत ये जग हंसता रहता, अनवरत ये जग कहता रहता, पर इनके कहने से करता क्या, वह चुप रह करके सुनता है। सारी बातों को स्थिर कर वह लक्ष्य पे आगे बढ़ता है। अपने होठों को चुप रहने का अक्सर अवसर देते रहना, इन जलती हुई मसालों को बुझने का अवसर मत देना। जब वही अकेला पड़ जाए तब साथ नहीं देता कोई, अपने अंदर की इच्छाओं को सदा दबाए रखता है। अब वही व्यक्ति जब सफल हुआ, पीछे उसके सब लोग वही फिर हाथ पसारे फिरते हैं, रहता कोई नाता भी नहीं, फिर भी कहते हैं चहेते हैं। इन लोगों के झूठे वचनों को संग रखने का अवसर मत देना, इन जलती हुई मशालों को बुझने का अवसर मत देना, इन जलती हुई मशालों को बुझने का अवसर मत देना।
1: अभी आपने सुना ये काव्य पाठ छात्रा शुभ्रा शुक्ला के द्वारा, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट आर्थिक जगत की ओर, जहां जानेंगे अवस्फीति और अपस्फीति क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों अवस्फीति क्या है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की गति कम होने लगती है, यानी महंगाई तो बढ़ती है लेकिन पहले की तुलना में धीमी गति से बढ़ती है, तो इस स्थिति को अवस्फीति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पिछले वर्ष महंगाई दर 8% थी और इस वर्ष घटकर 5% हो गई। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि पिछले वर्ष महंगाई दर 8% थी और इस वर्ष घटकर 5% हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि चीजें सस्ती हो गई हैं, बल्कि अब कीमतें पहले की तुलना में धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यही अवस्फीति कहलाती है। अवस्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए कई बार सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि महंगाई नियंत्रण में आ रही है। जब महंगाई तेजी से बढ़ती है तो लोगों की बचत और क्रय शक्ति प्रभावित होती है। अब ऐसे में अवस्फीति आर्थिक संतुलन बनाने में मदद करती है दोस्तों। और अब बात करते हैं अपस्फीति की। उम्मीद है आपको अवस्फीति समझ आई होगी। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार गिरने लगती हैं तो उसे अपस्फीति कहा जाता है। सुनने में ये अच्छा लग सकता है कि चीजें सस्ती हो रही हैं, लेकिन सच में अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थिति चिंताजनक हो सकती है। दोस्तों, अपस्फीति के दौरान लोगों की खरीदारी कम हो जाती है, इससे बाजार में मांग घटती है, उद्योगों का उत्पादन कम होता है और रोजगार के अवसर भी प्रभावित होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी देश में लगातार उदाहरण के तौर पर दोस्तों यदि किसी देश में लगातार वस्तुओं के दाम गिरते रहें तो कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं। युवा साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए संतुलन बहुत जरूरी होता है। बहुत अधिक महंगाई भी ठीक नहीं है और लगातार गिरती कीमतें भी नुकसानदायक हो सकती हैं। इसलिए सरकार और केंद्रीय बैंक समय समय पर ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे अर्थव्यवस्था संतुलित बनी रहे। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक भी महंगाई और आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि अवस्फीति का अर्थ महंगाई की गति में कमी, जबकि अपस्फीति का मतलब है कीमतों में लगातार गिरावट। उम्मीद है आर्थिक जगत की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसी के साथ अब समय हो गया है कार्यक्रम के अगले मधुर गीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से ये प्यारा सा गीत। आवाज है किशोर कुमार की, लिरिक्स है मजरूह सुल्तानपुरी के और कंपोज किया है आर डी।

दोस्तों समय हो गया है विदा लेने का, तो चलते चलते थोड़ी सी बात कर लेते हैं हीट वेव यानी लू के लक्षणों के बारे में। दोस्तों गर्मियों के मौसम में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण हीट वेव यानी अत्यधिक गर्म हवाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसी हीट वेव का गंभीर प्रभाव जब शरीर पर पड़ता है तो उसे आम भाषा में लू लगना कहा जाता है। यदि समय रहते सावधानी न बरती जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों लू लगने के कुछ प्रमुख लक्षण है, चलिए आपको बता देते हैं। जैसे तेज बुखार या शरीर का अत्यधिक गर्म हो जाना, सिर दर्द और चक्कर आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, कमजोरी और थकान महसूस होना, उल्टी या घबराहट होना, त्वचा का सूखा और लाल हो जाना और कई बार तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर आराम करना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सावधानी और जागरूकता ही हीट वेव से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। इसी कड़ी में चलिए जान लेते हैं दोस्तों कल के कार्यक्रम युवाणी में हम क्या ला रहे हैं खास सेगमेंट। चर्चा में बात होगी राष्ट्रमंडल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस पर। ज्ञान विज्ञान में बात होगी नेक्स्ट जन कम्युनिकेशन के बारे में। साथ ही सेगमेंट संस्था में जानेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में और सुनेंगे गीत संगीत। प्यारे दोस्तों इसी के साथ युवाणी का आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद है कार्यक्रम के

0: प्रस्तुतियां, चर्चाएं, जानकारी और गीत आपको पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक 8303211 व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दिशा पांडे को इजाजत। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम लोक संगीत में आप सभी का स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त, जो रहेगा अब से लेकर आपके साथ रात 11:10 तक। विशेष कार्यक्रम होंगे आज की इस प्रसारण सभा में साथियों, 8:15 पर लेकर आएंगे आपके लिए एक ही कलाकार से कार्यक्रम, सुनिएगा, जो शम्मी कपूर पर केंद्रित होगा आज का ये कार्यक्रम। फिलहाल लोक संगीत का ये कार्यक्रम और 6:30 पर एक और लोक संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे आपके लिए। अभी सुनिए अभिनंदन शुक्ला और साथियों के स्वर में किसानों को समर्पित ये गीत।

कार्यक्रम लोक संगीत में इस किसानी गीत के बाद आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला निर्गुण गीत, जिसे स्वर दिया है बब्बन निषाद और साथियों ने।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

0: ऐसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों आज अचानक मौसम बदला अपने यहाँ अयोध्या का और आसपास कहीं ना कहीं बारिश और फुहारें भी जरूर पड़ी होंगी, तो क्यों ना कार्यक्रम लोक संगीत में आइए सुनते हैं कजरी शारदा सिन्हा के स्वर में।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com।
3: कार्यक्रम लोक संगीत के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं देशभक्ति गीत शास्त्री यादव और साथियों के स्वर में।

0: जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया समाचारों की थोड़ी सी करें प्रतीक्षा।

0: प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना

0: वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा।

0: scheme, the memorandum of understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. In wrestling, Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh advanced to the finals of the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today, assuring India of at least two silver medals. In the 60-kilogram category, Suraj Vashisht edged past Kyrgyzstan's Nuristan Sirkulov 3-2 to book his place in the final. He will now take on Aybek Aitbekov of Kazakhstan in the gold medal clash. In the 67-kilogram category, Sagar Singh registered a commanding 4-0 victory over Saudi Arabia's Munthir Abdullah Ejandu in the semi-final. And with that, we end this news bulletin.
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। पेश है फिल्मी गीतों का प्रोग्राम शाम सुहानी। पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से। आवाज है वरुण जैन और सचिन जिगर की, संगीत सचिन जिगर का।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: कार्यक्रम शाम सुहानी में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गदर 2 से ये गाना। नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज और साहिल अख्तर की आवाजें हैं। गीत लिखा है सईद कादरी ने और संगीत मिथुन का है।

0: नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म गदर 2 से। और इसी के साथ खत्म हो रहा है प्रोग्राम शाम सुहानी। ये कार्यक्रम आप FM आकाशवाणी अयोध्या से सुन रहे थे। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को जा रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आजीविका मेल के अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः 150,000 युवकेभ्यः नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये 100,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवस पर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यो प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटम् राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अति उच्च स्तरे वर्धितम्। अपि च आईपीएल 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आजीविका मेल के अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः 150,000 युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे 47 विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। सम्पूर्ण देशात् चयनिताः एते नूतन कर्मचारिणः रेल मन्त्रालये, गृह मन्त्रालये, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालये, उच्च शिक्षा विभागे च इत्यादिषु विभिन्न मन्त्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रशासनिक नियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीय कर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वम् अस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिक कार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: श्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः विश्वः भारतस्य विकास यात्रायां सम्मिलितुं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमन्त्री यूनां कृते नूतन वृत्त्यावसाराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः 47-20,000 भारतं विकसित भारतं कर्तुं दृढ़ संकल्पेन कार्यं करोति।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण

0: जनाः परन्तु वास्तविक प्रकोपः एतस्मात् बृहत्तरः भवितुं शक्नोति यतः प्रायः 50-70 संदिग्ध प्रकरणानि 77-100 संदिग्ध मृत्युवः च पंजीकृताः सन्ति आईपीएल 20 प्रतिविंशति क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति स्पर्धेयं 7:30 समारप्स्यते इति वार्ताः
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
3: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 98-39-56-31-29 व 96-82-75-221।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन
2: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
3: कार्यक्रम गूंजे सर गांव के में ये अगला गीत है मालिनी अवस्थी और सखियों के सुर में।

मलिनी अवस्थी के स्वर में गए इसी प्यारे से गीत के साथ समाप्त हो रहा है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: पंचो जय हिंद।
7: लीला भैया।
8: हाँ लीला बहनी,
6: देखा आज तुझसे कितने दिन के बाद में भेंट मुलाकात होता है, और जब भेंट मुलाकात होते है ना आपस के लोगन से, तो मन बिल्कुल गदगद हो जाता है कि ना?
8: बिल्कुल सही कहते हो, और मन काहे ना गदगद हो जाए। देखा भाई, अपने सबके जो खेती किसानी है ना, वो अपने सब जब समय के अनुसार कीन जाते हैं, वो से अपने सबके मन गदगद हो जाते हैं।
6: बिल्कुल, और जहाँ तक अपने फसल की अगर बात कीन जाए भैया ना, तो अपने रवि के फसल कटी गए हैं और खेत अपन जो है एक तरीके से देखा जाए तो खाली पड़ा है।
8: बिल्कुल,
6: ऐसन में गर्मी में खेत के एक जो गहरी जुताई होता है, माटी का जो सेहत होता है ओके सुधारे के लिए, अपने पैदावार का बढ़ावे खातिर समझ लिया एक तरीके से वही मेरे से काम आवत है, जैसे अपने देही का मन ध्यान रखत है, अपन देह निरोग हो जाते है हर एक मेरे से ध्यान रखा जाए, तो वैसे अपन माटी भी होता है।
8: बिल्कुल सही बात कहू लीला बहनी। देखो यह सैती जोन है अपन जोन खेत पड़ा है, वही का अगर गहरी जुताई करे से माटी जोन है वो बिल्कुल एकदम भुरभुरी हो जाती है, और जोन वहां जड़ अपन अगली फसल लीत है वो अगर जड़ के विकास जोन है वो बहुत बेहतर ढंग से होता है, और वहां धूप लागे से जोन वहां हानिकारक किरवा होता है और खरपतवार होता है वो भी नष्ट हो जाता है।
6: बिल्कुल, और यही के साथ है भैया ना, माटी का अगर गहरी जुताई की जाए ना, तो उसे जैसे तेज जो घाम होता है वह ओकरे लागे से भुइया के अंदर जोन भी मौजूद हानिकारक कीट के रोना होते हैं, उनके अंडा या बच्चा जोन होते ना या फफूंद सब समझ लिया एक तरीके से मतलब नष्ट हो जाता है।
8: बिल्कुल, और साथ ही साथ देखा जाए तो जोन दूब हो गए, घास फूस हो गए, तमाम तरह के जोन पेड़ पौधा उमान ये शायद रात है वो सब झुराई जाते हैं, कहे से जोन अपन उसे अगली फसल जोन ले थे वही के खातिर ये सब बाधा नहीं बनते और अपन फसल जोन होता है वो बढ़िया होता है।
6: बिल्कुल, यानी कहा एक मतलब गर्मी में जोन जुताई कीन जाते है उसे एक तरीके से भाई तो सब फायदा होबे करते है, साथ ही साथ जल धारण की क्षमता भी बढ़त है, और यही के साथ जुताई के ही से भैया ना माटी में दरार और पोर बनत है, जोने से बारिश के बाद ही जैसे पोर का मतलब जो दरार वरार बनी रहा था ना, तो उसे जब पानी वानी अपन बरसत है बरखा बूंदी हो थे जोन, तो पानी ओकरे भीतर तक जाके समाये जाते है जोन की अपने मतलब माटी का नमी बनाए रहा।

0: रखत है और जोन की अपने जोन फसल है ओका फायदा पहुंचावत है।
1: बिल्कुल, कहें मतलब ये है कि जोन अपन माटी है ना, वही के जोन नाली है वो टूट जाते है वहां पानी खूब बढ़िया से सोख लेते है और जोने से अपन अगली जोन फसल होते है ना वो बढ़िया से उमान होता है और माटी जोन है देखवे करे तो भुरभुरी बढ़िया से हो जाते जब वहां बढ़िया से पानी सोखत है तो एकदम अंदर तक माटी बढ़िया से भुरभुरी हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जोन हो अगली फसल जोन लेते उकरे पौधन के जड़ तक जोन है ओकर पूरा फायदा मिलत है।
0: बिल्कुल भैया, ले अपन कोनो भी फसल आपने सबका लेक बाय तो ओकरे पहले जुताई है, माटी का जांच है या जोन भी अपने सबका अपने खेते पाती के लिए जैसे मान लिया तत्व है जोन उनका फायदे वाला होते हैं ओके सबके पूर्ति के बारे में जरूर से सोच समझ ले चाहिए और खाली इतने ना है अपने पशु प्राणी अगर पाले हैं तो उन्हों के पूरा ध्यान रखे चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा थो, देखो वो तो अपने सब अगर भाई खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक होते हैं है ना, लेकिन अगर कोनो भी जानकारी अपने सबका बढ़िया से रहत है तो वहीमा अपने सबका पीछे नहीं हटक पड़त है ना। ऐसा एक बात कही जो है लेके आवा है पशुओं में बाचपन कारण एवं निवारण जो उनकी बतावत है डॉक्टर रविन्द्र कुमार भैया और इनसे बतियान है अपने राम प्रकाश भैया।
0: हाँ चलो इन्हीं से सुना जाए।
1: चलो
2: पंचो, आज हमारे बीचे में है डॉक्टर रविंद्र कुमार भैया जो सहायक प्राध्यापक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से है। अये नहीं समझ जन्मे ना पशुओं में बाचपन कारण एवं निवारण, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमारी पंचायती में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: और आपसे मैं यही जानना चाहती थी ना कि अक्सर पशुओं में का ऐसा कमी हो जाता है कि बाचपन की समस्या दिखाई पड़ती
3: है। देखा ऐसा है कि पशुओं में बाचपन की जो समस्या है वो बहुत ही नुकसानदेह होती है, क्योंकि हमारा किसान जो पशुपालन का काम करता है वो उसका उद्देश्य होता है कि उत्पादन मिले उसको।
2: बिल्कुल।
3: और उत्पादन मिलने के लिए पशुओं में प्रजनन होना जरूरी है और प्रजनन का समय से होना बहुत जरूरी है। यदि ये दोनों चीजें प्रभावित होंगी तो निश्चित रूप से किसानों को इस पशुओं से लाभ नहीं मिल पाएगा, ना ही उत्पादकता प्रॉपर हो पाएगी,
2: आर्थिक नुकसान के सामना करे पड़ेगा।
3: निश्चित निश्चित। तो पशुओं में जो बाचपन की समस्या है इसको देख रेख करने के लिए शुरू से ही जब बच्चा पैदा होता है
2: जी।
3: उसी समय से देख रेख करते हुए और उसके वयस्क अवस्था में आने तक और फुल मेच्योरिटी पर आने तक हमें बहुत केयर करने की जरूरत होती है।
2: जैसे
3: कि पहला तो आता है पशु पोषण का।
2: हाँ, यानी खान पान।
3: जी जी। तो पशुओं के पोषण में जनरली क्या होता है जो देखा गया है सामान्यतया पशुओं को या तो आदमी कभी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा देगा, कभी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देगा, कभी मिनरल बढ़ा देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो महंगी चीज है उसको ज्यादा खिलाने से ज्यादा फायदा होगा। जरूरत ये है कि सबको संतुलित करके हमें खिलाना चाहिए,
2: मात्रा सबके बराबर हो
3: जी, जो आवश्यक है शरीर के ग्रोथ के लिए, शरीर में जो उसकी क्रियाएं हो रही हैं प्रजनन से संबंधित हो या उसके खुद के जीवन निर्वाह से संबंधित है, उस क्रिया को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए संतुलित भोजन का, संतुलित चारे का और दाने का होना अति
2: कैसे पंच जाने की संतुलित भोजन है। हाँ, काव काव खाओ कि उनका लगे खा संतुलित है।
3: संतुलित में देखें चारा जो हमारा इनका चारा है और राशन है, चारे के रूप में हरा चारा सबसे महत्वपूर्ण है
2: जी।
3: कहा जाता है कि अगर हरा चारा ही केवल देना हो एड लिप्टम, एड लिप्टम मतलब होता है पेट भर के, अगर कुछ नहीं आपके पास व्यवस्था है तो हरा चारा की व्यवस्था कर लीजिए। अब हरे चारे में बात आती है, दो तरह के चारे होते हैं
2: जी,
3: एक तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और एक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। अब प्रोटीन की मात्रा उसमें ज्यादा होती है जैसे दलहनी फसलें हैं, जैसे आपका मटर हो गया, चना का अगर पौधा हो गया, या सबसे बढ़िया लोग लोबिया की बुआई कर देते हैं, बरसीम है, ये सब प्रोटीन वाले चारे, चूंकि गर्मियों में बरसीम की व्यवस्था नहीं हो सकती है
2: जी,
3: तो लोबिया को चेरी के साथ बुआई कर दें तो थोड़ा सा व्यवस्था प्रोटीन और चेरी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, तो दोनों मिल करके एक बैलेंस चारा बन जाएगा। दूसरा, हम जो राशन देते हैं, राशन का मतलब हो गया जो अन्न के रूप में हम टुकड़े होते हैं जो हमारे मनुष्य के खाने योग्य नहीं होते हैं, उसको पशुओं को दिया जाता है, चोकर है, दलिया है, खंडे हो गए, दाल के खंडे हो गए, चूनी जिसको हम कहते हैं, तो इसको हमें बैलेंस मात्रा में रखना है। और खली जो दूसरा होता है, खली जो कि तेल का भी स्रोत है और प्रोटीन का भी स्रोत है, तो खली की भी मात्रा होना चाहिए लगभग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को 33% और 67% एक मोटा मोटा है, और नहीं तो फिर 66% जो है चोकर है और ये पॉलिश है, तो इसको देना है और उसके जो 33% जो हमारा बच रहा है।

0: है, इसमें खली 2-3% खली मात्रा रख दें, एक कम से कम 1-2 किलो मिनरल मिक्सचर की व्यवस्था कर दें, उसमें से मिक्स करके लगभग 1 क्विंटल का मात्रा बना लें 100 किलो का, और उसके बाद जितनी जरूरत हो। अब बात आती है देने की, अगर जानवर बच्चा दिया हुआ है दूध में है तो उसको जो उसके शरीर का निर्वहन के लिए 1 किलो राशन की जरूरत पड़ती है वो देना है, और प्रति अगर गाय है तो प्रति 2.5 लीटर पे 1 किलो राशन, और भैंस है तो प्रति 2 किलो पर 1 किलो राशन उसको देना चाहिए, और इससे उसका जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एनर्जी की कमी नहीं रहेगी, पूरे उसके शरीर के का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्रॉपर तरीके से काम करेगा।
1: बिल्कुल, और ये तो बात है कि पोषण का।
0: जी जी,
1: पोषण के बाद दूसरा कारण क्या हो रहा है?
0: दूसरा है कि समय पर अगर मान लीजिए हम सब व्यवस्था अच्छी हमारी है, हम सब चीज सप्लाई है, लेकिन उसको अगर आंतों से एब्जॉर्ब होने की बात आती है, प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए उसकी व्यवस्था, और दूसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पैरासाइट का लोड ना होने पाए, पैरासाइट का लोड के लिए समय समय से डिवर्मिंग का काम कराएं, और डाइजेशन मजबूत करने के लिए, अच्छा रखने के लिए लिवर टॉनिक, लिवर सपोर्टिव जो हैं इनको भी देना चाहिए।
1: जैसे आप कहें सही कहें कि अंतः परजीवी जो आते हैं उनकी तरह हमें कृमिनाशक या कोनो दवाई खोज, कब कब यानी बच्चा पैदा हुआ तो कब कब कैसे करना चाहिए?
0: बच्चे को अगर देना है जैसे अपने यहाँ तो ये कहा जाता है कि 10 दिन बाद, लेकिन अगर बच्चे को तुरंत अगर पैदा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉम ले, उसका कीड़े की दवा दिया जा सकता है।
1: अच्छा, ये और फिर आगे बढ़त गवा तो साल भर,
0: हर तीन महीने पे डिवर्मिंग कराएं, और डिवर्मिंग का जो 3-3 महीने जरूर डिवर्मिंग कराते हैं, और डिवर्मिंग हमेशा बदल कर कराएं, ये नहीं एक ही साल
1: डॉक्टर साहब
0: डॉक्टर से राय से ही कराएं, ऐसे ना कराएं।
1: बिल्कुल,
0: और डोजिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो ज्यादा ना तो कम होना चाहिए।
1: जब डॉक्टर भैया देखे हैं तो निश्चित ही सरकारी पशु चिकित्सालय जाए चाहिए और उनसे सलाह लिए चाहिए, है कि नहीं?
0: जी जी,
1: आप अना ना लाए के वैद की कह दी कैसे बहुत से नुकसान हो सकते है, पशु बांझ हो सकते है।
0: जी जी,
1: और का ध्यान दिया
0: आगे अब आती बात की, अगर हीट की पहचान जो सबसे बड़ी समस्या
1: जी
0: चैलेंजिंग है वो है गर्मी की पहचान, क्योंकि इस समय हम लोग ये गर्मी के दिन में हम लोगों का ये चल रहा कार्यक्रम, तो गर्मियों में सबसे बड़ा जो समस्या है वो है बहुत ज्यादा गर्मी, आप देख रहे हैं इससे बहुत स्ट्रेस में तो जानवर अपना जीवन, चाहे हम अपना जीवन बचाने में लगे उसी प्रकार से पशु भी अपना जीवन, तो पहला काम है इस समय पशु को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसको खूब पानी की व्यवस्था और खूब छाया की व्यवस्था कराएं इस गर्मियों में, और इस व्यवस्था के साथ साथ पशुओं को सुबह शाम गर्मी में आने का, क्योंकि इस समय जो गर्मी के दिन में गायों की गर्मी ज्यादा आती है गायों में, और भैंसों में इस समय गर्मी कम आती है, तो इसको सुबह शाम इंक्वायरी करें, गर्मी के लक्षण को जो भी उनको बताया गया है उसको मिलाएं, उसको देखें, और पहचानने के बाद, गर्मी पहचानने के बाद अपने जो AI वर्कर हैं या हॉस्पिटल से उनके डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करके समय से AI कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं, अगर नेचुरल सर्विस की व्यवस्था है उनके लिए। हालांकि हम लोग नेचुरल सर्विस के लिए अब मना करते हैं कि आपको AI 100% कराना ही चाहिए, क्योंकि उससे दो फायदे हैं।
1: कौन कौन?
0: एक तो जो सीमेन होगा वो जाना पहचाना होगा, किसी प्रकार की बीमारी से रहित होगा वो तो, और उससे आने वाली जो प्रोजनी है वो अच्छी आएगी और उसकी उत्पादकता भी अच्छी रहने की संभावना रहती है।
1: बिल्कुल, लेकिन अगर जाके यस कराई थी तो हमें दिक्कत हो,
0: इसमें कोई पता नहीं है, कोई नेचुरल सर्विस पे है, मान लो किसी भैंस को क्रॉस किया उसने और उसमें उस भैंस के बच्चेदानी में उस रास्ते में कोई इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन लेकर के इस एक जानवर से दूसरे जानवर में वो पहुंचा देगा।
1: बिल्कुल, एक बात और यहाँ ना, जैसे हम सीमन डलवाई थे तो मैंने कहा था कि अब 90% ही चांस है बचिए।
0: देखें ऐसा वर्गीकृत सीमन की व्यवस्था है,
1: बिल्कुल,
0: और वर्गीकृत सीमन से कराने में कोई नुकसान नहीं है, निश्चित रूप से उसका भी 10% मेल और 90% जो है जो 90%
1: पंच भैया के।
0: हाँ हाँ, ये सही बात है, कंसेप्शन थोड़ा सा कम रहता है।
1: अच्छा,
0: तो उसको देखते हुए
1: बिल्कुल
0: जैसा भी निर्णय उनका है वो ले सकते हैं।
1: और का कारण हो सकता था कि पशु ऐसे बांझ हुआ था, और पंच भैया का निवारण कैसे कैसे करे का है बताओ?
0: देखें, पशुओं में बांझपन के जो मेन समस्या है मेनली मैंने बता दिया आपसे कि नेगेटिव एनर्जी नहीं जाना चाहिए, तो चारे का बहुत ध्यान देना है,
1: पोषण
0: का, दूसरा डिवर्मिंग कीड़े की दवाएं समय से दें, अगर बीमारी होती है तो बीमारी का समय से इलाज कराएं।
1: जी, ये बात पंच भैया का विशेष ध्यान दिए का है। अच्छा, एक चीज और है, पहले जब हीट मावत रहे पंच भैया ले जाते रहे गर्भाधान करावत रहे तो लावत रहे ताले माया ओमन नहावत रहे, ये सब के का मतलब रहा? तो हमें न लागत कोनो मतलब है, आपका कहा चाहिए? हाँ।
0: देखिए ऐसा है कि नहलाना धुलाना सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है,
1: सही बात,
0: अच्छी बात है, लेकिन इसकी ऐसी कोई अगर उसके नहलाने से और उससे कोई बहुत बड़ा लाभ रुकने से संबंधित, जहाँ बात रही कंसेप्शन की, उसके प्रेग्नेंट होने की, उसका कोई संबंध बहुत
1: कब कब ऐसा हुआ था कि हम कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशु ना रुका
0: जी,
1: फिर का ध्यान।

0: देखें पशु, अगर मान लीजिए ये तो हमारे पास एक AI, लगभग हम एक कंसेप्शन पाने के लिए हमें 2.5 AI की जरूरत होती है, 2.5 AI, यानी कि अगर 100 AI करेंगे उससे हमारे पास 40 एनिमल हमें प्रेग्नेंट मिलेंगे। तो इसका मतलब है जरूर AI पहली AI पे नहीं रुक सकती है, दूसरी पर भी नहीं रुक सकती है, लेकिन अगर तीसरी भी AI पर भी नहीं रुकती, इसको हम फिर चली जाती है रिपीट ब्रीडर की संज्ञा में चाल रखते हैं, और रिपीट ब्रीडर के लिए फिर डॉक्टर से संपर्क करें, जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको लें अगर वो रिपीट ब्रीडर की श्रेणी में आ रही है। एक AI से बहुत नहीं घबराने का, अगर एक AI फेलियर हो रहा है तो कोई नहीं घबराने की जरूरत है, दूसरी AI करा लें। दूसरी AI कराने के बाद अब उनके प्रोडक्टिविटी और किसान के अवेयरनेस की बात है
1: जी।
0: अगर वो दो AI पर जानवर नहीं रुका है तो उसको कोशिश करना चाहिए, डॉक्टर की ओपिनियन ले लेना चाहिए, तभी अगली AI करानी चाहिए। बार बार AI कराने से पशुओं में बहुत ज्यादा नुकसान होने का संभावना रहता है और कंसेप्शन के मिलने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे में हमें AI दो बार के बाद तीसरी बार कराना हो तो उसको जरूर सोचना चाहिए, उसमें रुकना चाहिए
1: बिल्कुल।
0: और रिपीट ब्रीडर की अगर आ जाती है, ऐसे केस एनिमल को हम रिपीट ब्रीडर में कहते हैं, जो बार बार गर्मी में आते हैं रुकते नहीं, ऐसे जानवर को हम रिपीट ब्रीडर कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स का, ऐसे पशुओं का हमें डॉक्टर से ओपिनियन लेकर के उसका इलाज करना चाहिए
1: बिल्कुल। चलो चलो, जो पंच आपका रेडियो सुनता है उनसे आप क्या कहा चाहिए?
0: उनसे हम यही कहेंगे कि अपने पशुओं में समय से AI कराएं और उन चारे और पानी की व्यवस्था अच्छा रखें, ताकि उनके पशु स्वस्थ रहें और समय से गर्मी पर आवें और समय से वो कंसेप्शन हो जाए और समय से उनको उत्पादन मिलेगा, उस उत्पादन से उनका लाभ होगा
1: बिल्कुल। आप रहे डॉक्टर रविंद्र कुमार भैया, जो सहायक प्राध्यापक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से रहे। आप हमारी पंचायती में आए, पशुओं में बांझपन कारण एवं निवारण के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी। जरूर पंच भैया ये पर ध्यान दे के अपने पशुओं पर ध्यान दिए और खूब लाभ कमाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धीरज भैया,
3: हाँ लीला बहनी,
2: ये जो जानकारी रही पशुओं में बांझपन कारण एवं निवारण विषय पर, डॉक्टर रविंद्र कुमार भैया बताओ तो इनसे अपने राम प्रकाश पांडे भैया कितना बढ़िया तरीके से बतियाने कि पशुओं में जो बांझपन होता है उसके कौन मेर से कारण होता है, कौन निवारण कैसे कर जाता है, और अपने पशुओं के अगर अपने समय सही ढंग से ध्यान रखा जाए तो समझ लिया अपन पशुए सही तरीके से अपने बीचे में रह सकते हैं।
3: बिल्कुल, देखो डॉक्टर भैया कितना की तरह से बताएं कि अगर अपने सब यह मेयर से उनके कहे के अनुसार से खान पान वह उनके रहन सहन के बारे में अगर अपने सब बढ़िया से ध्यान दी जाए ना, तो जो नहीं बीमारी बांझपन वाली है समस्या है तो उसे काफी हद तक अपने सबका निजात मिल सकता है।
2: बिल्कुल भाई, देखा अपने परिवार में अगर अपने सब पशुओं का पाले बाटे तो उनके हर एक मेर से सर सफाई का है, उनके रहन सहन का है कि कौन जगह पर है, उनका कैसे राखे है, या खान पान में कौन जैसे विटामिन है, कौन संतुलित आहार है, कैसे जैसे अपने सबका ध्यान रखा जाता है वैसे ने उन्हों का ध्यान रखे का है।
3: बिल्कुल, और देखा भाई तमाम तरह से मिनरल होते हैं खान पान में, डॉक्टर भैया बताते हैं कि उन्हें प्रतिदिन, यह समय देखो गर्मी इतना ही है ना, तो उनके नादा में उनके शरीर उतुआ में थोड़ा सा नमक की मात्रा जो है वो देख चाहिए, गर्मी के उतुआ में देखो
2: देख चाहिए, और सर सफाई का पूरा ध्यान रखा चाहिए, उनके जो पशुए हैं उनके छाम रखा चाहिए, ना कि भाई घाम है अरे तो हम तो भाई भीतर बैठा उठा बाटन पशुए अपन घूमट टहरता है अरे घामे वामे में, तो ऐसा में भाई नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन धीरज भैया अब अपन पंच भैया तनी भाई उसुक मुसुक लगाए बाटिन काहे का जानत हो
3: काहे का?
2: अरे भैया अब ये सोचत बाटिन ना कि ये सब खाली बतुआते बतुआ चला जात बाटिन, कुछ हमारे सबका गीत को नहीं सुनवाई है कि नहीं?
3: तो देखो शारदा सिन्हा उनके साथी के आवाज में चलो सुना जाए।
2: चलो बिल्कुल।

0: धीरज भैया।
1: हाँ लीला बहनी।
0: गवनई किस लाग?
1: बिल्कुल एकदम जू गदगद हो गया।
0: अरे खाली तोहरे ना है वो, देखा काका ओका कैसे मुस्कियात बाटिन, काकी वाकी सब है कि ना है। और भाई देखा गीत गौने ऐसा होबे करत है ना कि जब अपन थकान आ जाए, कार बूथ से अपने समय बिल्कुल उबिया जाए, तो लागत है ना कि कुछ कहे ना भाई, अपने जीव का ताजा करे के लिए कुछ मन मन सावन भी हो जाए है कि ना।
1: जैसे देखा अपन एकदम जोन बटे
0: ताजगी आ जाता
1: है, एकदम ताजगी आ जाता है। लेकिन देखा भाई गर्मी या समय कितना ही है ना, ऐसन में अपने अपनों सबका अपने जो है शारीरिक देखभाल करे के जरूरत है।
0: हाँ, है ना? और गर्मी के बाद जो करत बाटे हो ना घाम भैया इस लागत है कपारे पर ही कहूँ चले लागा, तो जैसे लागत है ना कि आगे गोला वोला मुड़ो धाई उठाबाए। अरे हमका याद है अभी बहरवा हम निकली रहन दोपहरिया मना कहूँ जाए कर रहा,

0: भैया इतना समझ लिया धैर्य रही तो यही हमारे सावधानी से चले का चाहिए।
1: लागत है जैसे एकदम शरीर में आंच ही लागत बा है ना।
0: हाँ, लेकिन भैया देखा ये सब बात बत कही तो होत रहे काहे ना अपने बाजार का जोन भाव मिला बा अपने सबका वहू का बतावत चला जाए।
1: बिल्कुल, तो जोन अयोध्या मंडी से बाजार भाव मिला है वही के मुताबिक चावल जोन कामन रहा वही के भाव रहा 3050 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं दड़ा के भाव रहा 2585 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का पियर की रही 2400 रुपया प्रति क्विंटल और उड़द काला रहा है 9280 रुपया प्रति क्विंटल
0: और देसी चना 6400 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 7100 रुपया प्रति क्विंटल, अरहर के दाल 10950 रुपया और प्याज के भाव रहा 1200 रुपया यानी 1200 रुपया प्रति क्विंटल, टमाटर के भाव 1600 रुपया, लहसुन के भाव रहा 6990 रुपया, तरोई के भाव रहा 2000 रुपया प्रति क्विंटल,
1: खीरा के भाव रहा 1570 रुपया प्रति क्विंटल, बैगन रहा 2200 रुपया, हरी मिर्च के भाव रहा 3500 रुपया प्रति क्विंटल, कोहड़ा रहा 1400 रुपया प्रति क्विंटल,
0: अदरक के भाव रहा 6500 रुपया प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 2900 रुपया प्रति क्विंटल, भिंडी के भाव रहा 1820 रुपया, लौकी के भाव 1600 रुपया यानी 1600 रुपया प्रति क्विंटल, आलू उजर कई 725 रुपया प्रति क्विंटल,
1: करेलों के भाव रहा 1560 रुपया प्रति क्विंटल, नींबू रहा 7700 रुपया प्रति क्विंटल, केला पका रहा 2700 रुपया प्रति क्विंटल और पपीता के भाव रहा 2700 रुपया प्रति क्विंटल,
0: सेब के भाव रहा 11400 रुपया प्रति क्विंटल और अनार के भाव 7900 रुपया प्रति क्विंटल, गुड़ बट्टी 5090 रुपया प्रति क्विंटल, चीनी के भाव रहा 4125 रुपया प्रति क्विंटल।
1: ये तो रहा जोन अयोध्या मंडी से अपने बाजार भाव मिला है, लेकिन मौसम के जोन हाल है वो अपने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से जोन मिला है वही के मुताबिक अधिकतम जोन तापमान रहा पिछले 24 घंटा का वो रहा 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड जोन की सामान्य से 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा है और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड जोन की सामान्य से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा
0: और सापेक्षिक आर्द्रता यानी नमी जोन है अधिकतम 80% और न्यूनतम 41%, हवा की गति 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दिशा दक्षिणी पश्चिमी,
1: वर्षा शून्य रहा। पूर्वानुमान यह है कि आने वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम जोन है वो ऐसे बना रहे और अधिकांश जगह पे लू भी चले के आसार हैं और सामान्य गस्ते जोन हवा है वो पछुआ और पूर्वा भी चल सकत है और तापमान जोन है वो सामान्य से समझो कि 3-4 डिग्री जोन है ज्यादा रहे के अनुमान है।
0: भैया तो यही मेरे से अपन जोन भाई रहे सहायक तरीका है अपने कारभूत के तौर तरीका है या कहूँ जाए आवे है तो अपन गमछा उमछा बांध बूंद के अपने मूढ़े उड़े में बढ़िया तरीके से जाए आवे यानी कौनो मेयर के कोताही अपने देही बदे अपने पशु प्राणी बदे ना करे का है। लेकिन धीरज भैया अपन तनी घड़ियों को अरी तो निहारा।
1: बिल्कुल, देखो अपने सबके जो कार्यक्रम का समय है ना वो भी समाप्त हो रहा है धीरे धीरे,
0: तो अगले दिन के कार्यक्रम रहे कृषि जगत और यही के साथ ही अपन जो भाई खड़ी कहत भाई कि अपने सबके बात बात का एक समय समाप्त हो चला है तो अगले कार्यक्रम में फिर मिला जाए, तब तक के लिए लीला का
1: और धीरज का दे अनुमति,
0: जय हिंद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे हैं।
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: आंगनवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी FM 101.9 MHz।

और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर ये एफएम आकाशवाणी अयोध्या है। प्रस्तुत है आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण।

तो श्रोताओं, आज के शेष कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। रात 8:15 पर आप स्टूडियो से सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार से, जो आज केंद्रित होगा शमी कपूर पर। रात 9:15 का वक्त होगा महफिल गजल का, और 9:30 पर होगा आपका अपना पसंदीदा दैनिक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। नंबर होगा स्टूडियो का 73-76-80-40-90। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब आइए आपको कल के कुछ खास कार्यक्रमों से अवगत करा दें। कल सुबह 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, जी हाँ, दोनों ही सुबह और शाम कार्यक्रम विवरण 7:15 पर, और इसी तरह सुबह शाम 7:20 पर आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश, 8:15 पर सुर संगम, 8:30 से सुबह दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का मुख्य आकर्षण होगा फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी। आज की बात का विषय रहेगा कल राष्ट्रमंडल दिवस। इसी कार्यक्रम में आपको बताएंगे समाचार पत्रों से कुछ स्थानीय खबरें। सुबह 9:00 से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, और 9:30 से फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम कंपेयर्ड प्रोग्राम होगा बातें आसपास की। दोपहर 12:30 पर अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, 1:00 से आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, और 1:30 से स्टूडियो से ही फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम कुछ तुमने कहा। वहीं दिन में 2:00 से होगा गैर फिल्मी गीतों का दैनिक कार्यक्रम गीतांजलि। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा कॉमनवेल्थ दिवस और बड़ों का सम्मान करें। रोचक जानकारी में लखनऊ के चिड़ियाघर की होगी बात, राष्ट्रमंडल देशों के बारे में सुनीता सिंह की भेंटवार्ता, और प्रेरक व्यक्तित्व के अंतर्गत रास बिहारी बोस पर जानकारी साझा की जाएगी। इसके अलावा बच्चे सुनेंगे बाल गीत। दिन में 2:30 पर बाल जगत के बाद आप चलते हैं शाम 5:00 युवाणी में, चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रमंडल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस, ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन और संस्था सेगमेंट में राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की जानकारी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोता अभिषेक मिश्रा से सदक हुसैन की बातचीत के साथ फिल्मी गीतों का होगा प्रसारण। शाम 5:30 से लोक संगीत, 6:10 पर शाम सुहानी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम होता है, 6:30 से लोक संगीत का एक और कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। शाम 6:45 पर कृषि जगत में चर्चा का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण, गर्मी की जुताई के लाभ विषय पर डॉक्टर आनंद सिंह से की गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। इसी कार्यक्रम में लोक संगीत, बाजार भाव, मौसम का हाल जानेंगे आप। कल रात 8:15 पर साप्ताहिक कार्यक्रम होगा शेर और गीत, रात 9:15 पर खेल खिलाड़ी, और 9:30 से आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद 7:20 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। यह रोजगार मेला राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा सहित पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ ये माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
3: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधान

0: के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
2: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
1: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
3: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
1: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आपको याद दिला दें कि रात 9:30 से 10:30 तक पूरे एक घंटे आप सुनेंगे आपका अपना पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर रहेगा 7376 80 40 90। साथ ही साथ महफिल गजल लेकर हाजिर होंगे रात 9:15 पर और 8:15 का वक्त होगा आज खास साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार से। और आज ये कार्यक्रम केंद्रित होगा शमी कपूर मशहूर अभिनेता से। फिलहाल आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र जहां आपसे लेकर 8:15 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।
2: इसलिए नहीं कि हमने वहाँ शूटिंग की है, बल्कि इसलिए कि वहाँ के लोगों में जो हौसला, जो भाईचारा देखा, वो हमारे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। आप खुद ही गौर कीजिए, पानी न बरसा हो, जहाँ एक हरी पत्ती की तलाश में आंखें पथरा जाएं, जहाँ के लोग भूख प्यास का सामना करते हुए तपती हुई रेत पर चलकर मीलों दूर से पानी ले आए, मगर अपने गांव को न छोड़ें, उन्हें अपनी धरती से कितना प्यार होगा। करीब 2 महीने हम लोग वहाँ रहे। मुश्किल से 10-12 घरों का गांव था। वहाँ के सब लोग हमसे इतना घुल मिल गए थे कि जब हम लोग वहाँ से चलने लगे तो उनकी आंखों में आंसू थे। हम भी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और सुनील की तो अजीब ही हालत थी। उन्होंने कहा कि मैं अपना टेंट खुद उखाड़ूंगा। उस वक्त सुनील की आवाज रुंधी हुई थी, दिल भरा हुआ था और शायद वो अपने आप को काबू में रखने के लिए खुद से जंग कर रहे थे। हम लोग शुक्र गुजार हैं उन गांव वालों के, जिन्होंने हमें प्यार और मोहब्बत का ना खत्म होने वाला खजाना दिया। बेशक जैसलमेर के उस गांव के वो लोग हमारी तहजीब का जीता जागता नमूना है। आखिर में अपने सुनने वालों को रेशमा और शेरा का गीत सुनवाती हूँ, जिसे बाल कवि बैरागी जी ने लफ्जों का जामा पहनाया है और राजस्थान के उस इलाके की पूरी मंजर कशी की है। संगीतकार हैं जयदेव, और जयदेव के लिए ये जरूर कहूंगी कि जयदेव ने कभी दौलत के आगे सर नहीं झुकाया। वो म्यूजिक उतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है, बल्कि जयदेव एक ऐसा कलाकार है जो गीत को संगीत से सजाता है, गीत के लिए संगीत को बेचता नहीं। लीजिए रेशमा और शेरा का ये गीत सुनिए।

तो दोस्तों ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी साथियों की सेवा में इसे प्रस्तुत किया फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। विविध भारती के संग्रहालय से ये रिकॉर्डिंग हम खास आपके लिए लेकर आए।

0: यूनिवर्सिटी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने के यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जी

जिज्ञासा। जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है चाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और चाय उद्योग से जुड़े हुए लोगों की तरफ ध्यान खींचना। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस साल 2005 से मनाया जा रहा है, लेकिन पहले ये दिन 15 दिसंबर को मनाया जाता था। साल 2015 में यूनाइटेड नेशंस के खाद्य और कृषि संगठन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इंटरनेशनल टी डे मनाने का एक प्रस्ताव रखा और 21 दिसंबर 2019 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया और 21 मई को इंटरनेशनल टी डे घोषित कर दिया गया। 21 मई 2020 को पहली बार इंटरनेशनल टी डे मनाया गया था और तब से आज तक लगातार टी डे मनाया जा रहा है। आप जानते होंगे कि भारत की कुछ चाय बहुत ही मशहूर है, जैसे असम की रोंगा साह। ये असम के चाय बागानों में उगने वाली खास चाय होती है। ये हल्के भूरे और लाल रंग की होती है। बंगाल की दार्जिलिंग चाय का नाम तो हम सभी ने सुना है और इसे चाय की शैंपेन कहा जाता है। तमिलनाडु की नीलगिरी चाय नीलगिरी पहाड़ियों पर उगाई जाती है और इसमें मसालों का भी फ्लेवर आता है। और कश्मीर की नून चाय जो बहुत ही अलग तरह की चाय होती है। अब जानते हैं कि चाय की खोज किस तरह से हुई थी। कहते हैं कि करीब 2700 ईसा पूर्व चीनी शासक शेन नुंग बगीचे में बैठे गर्म पानी पी रहे थे। तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरी, जिससे उसका रंग बदला और पानी एकदम महक उठा। राजा ने चखा तो उन्हें इसका स्वाद बड़ा पसंद आया और इस तरह से चाय का आविष्कार हुआ। एक और कहानी के मुताबिक 6वीं सदी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधिधर्म बिना सोए ध्यान साधना करते थे। वो जागे रहने के लिए खास तरह के पौधे की पत्तियों को चबाया करते थे। बाद में यही पौधा चाय के रूप में मशहूर हुआ। चीन में शुरुआती दौर में चाय को एक औषधि, एक दवा माना जाता था। लोग ये मानते थे कि चाय पीने से दिमाग तेज होता है, हाजमा बेहतर रहता है और शरीर में जोशो खरोश बना रहता है। भारत में चाय अंग्रेजों की देन है, वही भारत में चाय लेकर आए थे। साल 1834 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक भारत आए तो उन्होंने असम में लोगों को एक तरह की पत्तियों को पानी में उबालकर दवाई की तरह पीते हुए देखा था। दरअसल ये चाय की ही पत्तियां थी। बेंटिक ने असम के लोगों को इन पत्तियों के बारे में बताया और इस तरह से भारत में चाय की शुरुआत हुई। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं और वो है प्रोफेशनल टी टेस्टर का करियर कैसे अपनाया जा सकता है। दरअसल ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें चाय की क्वालिटी, खुशबू और चाय के टेस्ट को परखने का काम किया जाता है। अगर आपको चाय की अलग अलग वैरायटी को समझने में दिलचस्पी है और अगर आप ये करियर अपनाना चाहते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। प्रोफेशनल टी टेस्टर का काम चाय पीना नहीं होता, बल्कि वो चाय की पत्तियों की क्वालिटी, उसकी एरोमा, रंग और उसके टेस्ट को बड़ी बारीकी से जांचता है। इसके अलावा टी टेस्टर चाय के नए ब्लेंड तैयार करता है, मार्केट ट्रेंड को समझता है, ग्राहकों की पसंद के हिसाब से फ्लेवर चुनने का काम भी करता है। बड़ी बड़ी चाय कंपनियों में और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में टी टेस्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। टी टेस्टर बनने के लिए कोई एक तयशुदा डिग्री या कोर्स नहीं होता, लेकिन फूड साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कोई कोर्स आपने किया होगा तो इससे काफी मदद मिलती है। भारत में कई संस्थान टी टेस्टिंग और टी मैनेजमेंट से जुड़े हुए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। सिलीगुड़ी में कुछ संस्थान है जो 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, जहां चाय की पहचान, टेस्टिंग की टेक्निक और क्वालिटी चेकिंग सिखाई जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल टी मास्टर्स एसोसिएशन और यूके टी एकेडमी जैसे संस्थान विदेशों में हैं और सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं। इस फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके भीतर ये काबिलियत होना चाहिए कि आप चाय के स्वाद और उसकी खुशबू को बारीकी से पहचान पाएं। इसके अलावा धीरज, ऑब्जर्वेशन स्किल, फूड टेस्टिंग की समझ और मार्केट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको चाय की उत्पादन

उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग की जानकारी होगी तो इससे एक्स्ट्रा मदद मिलती है। इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है। जब धरती आसमान तपते हैं तो इंसानी संवेदनाएं ठंडी पड़ जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या शानदार डायलॉग है, पर असल में ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि दुनिया के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है, लेकिन अब ये भी पता चला है कि इसका असर हमारी भावनाओं और हमारे मूड या हमारी मनोदशा पर भी पड़ता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समेत दुनिया के कई संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की। उससे पता चला कि गर्म मौसम में लोगों की भावनाएं नेगेटिव और निराशाजनक हो जाती हैं। अध्ययन में ये पाया गया कि जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो सोशल मीडिया पर लोगों के पोस्ट नेगेटिव हो जाते हैं। ये असर कमजोर देशों में कहीं ज्यादा साफ नजर आता है। ये स्टडी 157 देशों में की गई, 120 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट का एनालिसिस किया गया। 2019 में ये पोस्ट आई थी। 65 अलग अलग भाषाओं में की गई इन पोस्टों को पढ़ने समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये पता चला कि जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो लोग चिड़चिड़े और नेगेटिव हो जाते हैं और उनका टेंशन बढ़ जाता है। नतीजे ये बताते हैं कि जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है तो आर्थिक रूप से कमजोर देश के लोग 25% से ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जबकि विकसित देशों में ये दर 8% के आसपास देखी गई है। अब ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि बढ़ता हुआ तापमान सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक कामकाज पर ही असर नहीं डालता, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की भावनाओं पर भी असर डालता है और ये असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हर साल 20 मई को पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है मधुमक्खी और अन्य परागण करने वाले जीवों के बारे में लोगों को जागरूक करना। मधुमक्खियां वैसे तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पर्यावरण और मानव जीवन को संतुलित रखने में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां फूलों का परागण या पॉलिनेशन करती हैं और इससे फल, सब्जियां और तरह तरह की फसलें उगती हैं। इसीलिए मधुमक्खियों को कुदरत के सबसे मेहनतकश जीवों में गिना जाता है। मधुमक्खी दिन की शुरुआत साल 2018 में हुई थी और यूरोप का देश है स्लोवेनिया, वहां की गवर्नमेंट ने ये पहल की थी और संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। दरअसल ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आधुनिक मधुमक्खी पालन के जो जनक माने जाते हैं एंटोल जांशा, उनका जन्मदिन था ये और उन्हें नमन करते हुए इस दिन का चुनाव किया गया विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने के लिए। मधुमक्खियां हमारी जिंदगी और पर्यावरण के लिए बहुत मायने रखती हैं। जैसा कि हमने कहा कि इनके बिना पौधों का पॉलिनेशन या परागण नहीं हो सकता। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी खाने पीने की चीजें हैं उनमें मधुमक्खियों का योगदान है। दुनिया की 35% फसलों के उत्पादन में परागण करने वाले जीव सीधी सीधी मदद करते हैं। यही नहीं, 90% जंगली फूलों के पौधों को जिंदा रखने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मधुमक्खियां न केवल हमारे खाने को बनाए रखती हैं बल्कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए भी बहुत मददगार होती हैं। ये पौधों के प्रजनन में बहुत मदद करती हैं जिससे जंगल और खेत दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और मधुमक्खियों के जरिए गांव के लोगों को जो रोजगार मिलता है वो अलग है, क्योंकि शहद और मोम जैसे उत्पादों के जरिए लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आजकल मधुमक्खियों की तादाद तेजी से घट रही है और इसके पीछे वजह है जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, रासायनिक कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। यदि ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है, इसलिए इनके संरक्षण की जरूरत
पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। साल 2026 में विश्व मधुमक्खी दिवस की जो थीम थी वो थी लोगों और धरती के लिए साथ मिलकर एक

ऐसी साझेदारी जो हम सभी को बनाए रखती है। दरअसल ये मधुमक्खी और इंसान के रिश्तों को दिखाने वाली थीम है। हजारों सालों से इंसान और मधुमक्खियां एक दूसरे से जुड़े हैं। लोग शहद के लिए मधुमक्खियों को पालते हैं और बदले में मधुमक्खियां कुदरत का संतुलन बनाकर रखती हैं। आधुनिक तकनीक हो और पारंपरिक ज्ञान, अगर ये आपस में मिल जाएं तो मधुमक्खी पालन ज्यादा सेफ तरीके से और ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से किया जा सकता है। मधुमक्खियां ये याद दिलाती हैं कि ये जीव भले ही छोटा सा है लेकिन धरती के लिए बड़ी भूमिका निभाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चीज को लेकर हम सभी को बहुत ज्यादा खबरदार किया है। WHO ने यह बोला है कि सीसा या लेड इंसान के भीतर पाया जा रहा है। WHO के अनुसार हर साल तकरीबन 35 लाख लोगों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों से होती है और इसका सीधा सीधा ताल्लुक है लेड के जहर से। दुनिया में तकरीबन 81.5 करोड़ बच्चे सीसे के कांटेक्ट में हैं, लेड के कांटेक्ट में हैं, यानी दुनिया का हर तीसरा बच्चा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लेड शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक मेटल है और इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर, प्रेग्नेंट महिलाओं पर और लेड इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। अगर लेड हमारे शरीर में जाता है, खासतौर पर बच्चों के शरीर में, तो उनकी मानसिक क्षमता पर असर पड़ता है और इसके अलावा पढ़ाई और सोचने समझने की शक्ति और इसके अलावा उनकी कमाई, इन सब पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दिल, दिमाग, किडनी और हमारे तंत्रिका तंत्र पर लेड बहुत बुरा असर डालता है। पूरे देश में जेठ के महीने में गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है और यही वो दिन है जब नौतपे की शुरुआत होती है। अगले हफ्ते में नौतपा शुरू हो जाएगा। 25 मई से 2 जून तक के ये 9 दिन हैं जब गर्मी अपने चरम पर होगी। इस दौरान तेज लू चलेगी और झुलसा देने वाली धूप जो सीधे हमारे दिलो दिमाग पर असर डालती है। ज्यादा पसीने की वजह से शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स तेजी से बाहर निकल जाते हैं जिससे डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सिर दर्द और हाजमे से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये जो समय है नौतपा का जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे में कैसी खुराक लें? ऐसी खुराक जो पचने में हल्की हो और जिसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो। यानी ऐसे दिनों में आपको अपनी डाइट में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा जैसी चीजें शामिल करना चाहिए क्योंकि इनमें 90% पानी होता है। और एक बात यह है कि शरीर में ऐसे दिनों में फ्लूड बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। दोपहर और रात के खाने में आपको हैवी चीजें नहीं लेनी है, सादा और हल्का खाना खाएं। मूंग की दाल की खिचड़ी, दाल चावल, दलिया, पतली रोटी और हरी सब्जी खाएं। नौतपे में ज्यादा मसालेदार और तला भुना खाना नहीं खाना है। मिर्च मसाले, कचौरी, समोसे, प्रोसेस्ड फूड वगैरह खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और तबीयत खराब होगी। चाय कॉफी जितनी कम से कम पिएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मीठी चीजें छोड़ दीजिए। इसके अलावा बासी और खुला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है। नौतपे के दौरान आपको ये इंतजार नहीं करना है कि आपको प्यास महसूस हो रही है या नहीं। हर आधे एक घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। दिन में 12 बजे से 4 बजे के बीच तो घर से बाहर नहीं निकल, खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं को या बीमार लोगों को इस दौरान बाहर नहीं निकलने देना है। तो सावधानी रखेंगे, नौतपे के ये दिन बीत जाएंगे और उसके बाद जब मॉनसून आएगा तो धरती में बहुत ज्यादा बारिश होगी और सुकून मिलेगा। तो इंतजार करते हैं बारिश का। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ, पत्नी का पत्र। इस कहानी का चौथा और अंतिम भाग लीजिए आज प्रस्तुत है, वाचन स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का।

दोस्तों, पिछले हफ्तों में आपने सुना, बिंदु का रंग काला होने से उसके विवाह में अड़चने आती हैं, लेकिन एक पागल व्यक्ति से उसका विवाह तय हो जाता है। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना, लेकिन उसकी शादी एक पागल व्यक्ति से हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो मृणाल के घर वापस शरण लेती है, लेकिन उसके ससुराल से उसके जेठ आते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। अब आगे मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार दो बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूँ, जब से तुम्हारे घर आई हूँ। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुप गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा, मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पूरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने

0: जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला। वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, जी जी अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। बिंदु।
1: आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर।
0: जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है। अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं, बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहां खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूं। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है, अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवन इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुद्बुद है वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी षट नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों ना कोई पुकार।

सारे मैं उस अंतःपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी। ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला, क्यों? कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी? और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहां गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार? कहां गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा? कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरे मझली बहू, तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा। तुम्हारी गली का अब मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक के रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपने मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उघाड़ दिया। आज बाहर आकर देखती हूं, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनाहत रूप, जिनकी आंखों को भाया है वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी, उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं भी जो भी है सब छोड़े। लेकिन मीरा की लगन वही रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी। मैं बच गई हूँ। जीवित रहूंगी। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मैं जीवित रहूंगी।

कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था चौथा और अंतिम भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से FM 101.9 MHz और प्रसार

0: भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए शनिवार का खास साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार से।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: Hello.
3: No. Telephone number.
4: My number is
5: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

जी हाँ श्रोताओं, इन प्यारी धुनों पर सवार होकर जा गया है आपका साप्ताहिक प्यारा सा प्रोग्राम एक ही कलाकार से। और आज ये प्रोग्राम केंद्रित है फिल्म अभिनेता शमी कपूर पर। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर सदक आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या के इस खास साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार से में आपके स्वागत के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं दोस्तों जिन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया है बल्कि अपने अंदाज से पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर दिया था। आज के हमारे सितारे ऐसे ही अभिनेता हैं जिनकी मस्ती, जिनकी ऊर्जा, जिनका याहू आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। जी हां, आज की शाम, आज की रात समर्पित है हिंदी फिल्मों के पहले रॉकस्टार कहे जाने वाले अभिनेता शम्मी कपूर को।

रंग दीप

दोस्तों, शम्मी कपूर का असली नाम था शमशेर राज कपूर। वे मशहूर कपूर परिवार से थे। उनके पिता थे पृथ्वी राज कपूर और बड़े भाई राज कपूर। उनके साथ शशि कपूर भी इनके भाई थे। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्मी परिवार से होने के बावजूद शुरुआती दौर में शम्मी कपूर को लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि उनकी लगभग 18 फिल्में लगातार फ्लॉप रही थीं। फिर आया साल 1957 और फिर तुम सा नहीं देखा ने उनकी किस्मत बदल दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम एक ही कलाकार से में। और आज बात हो रही है फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर के इस प्रोग्राम में। जी हाँ, शम्मी कपूर ने हिंदी फिल्मों के हीरो की परिभाषा बदल दी थी। जहां उस दौर के अभिनेता गंभीर अंदाज में नजर आते थे, वहीं शम्मी कपूर ने स्क्रीन पर बिंदास ऊर्जा, अनोखा डांस और बेफिक्र रोमांस लेकर हाजिर हुए। उनके गानों में जो जोश दिखाई देता था, उसमें महान गायक मोहम्मद रफी की आवाज का बहुत बड़ा योगदान था। कई लोग कहते हैं कि रफी साहब की आवाज और शम्मी कपूर की अदाएं, ये जोड़ी अपने आप में एक जादू थी।

तो श्रोताओं, ये फिर से बातचीत शुरू करते हैं अभिनेता शम्मी कपूर की आज के इस खास प्रोग्राम एक ही कलाकार से में। शम्मी कपूर की फिल्मों की एक और खासियत थी खूबसूरत लोकेशंस, कश्मीर की वादियां हों या पेरिस की सड़कें, उनके गीतों ने दर्शकों को सपनों की दुनिया दिखाई थी। फिर फिल्म कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्मों ने भारतीय दर्शकों को विदेशी लोकेशंस का नया आकर्षण दिया था। शम्मी कपूर को भारत का एविल्स प्रेस्ली भी कहा गया। उनका डांस इतना अलग था कि वो अक्सर अपने स्टेप्स खुद ही तैयार करते थे और कई बार उन्हें कोरियोग्राफर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। फिल्म जंगली का याहू सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो युवाओं की आजादी और मस्ती का प्रतीक बन गया। दोस्तों, शम्मी कपूर की जोड़ी कई अभिनेत्रियों के साथ खूब पसंद की गई। सायरा बानो, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख और साधना जैसी अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने कई यादगार फिल्में दी। कहा जाता है कि सेट पर वे बेहद जिंदा दिल इंसान थे और माहौल को हमेशा खुशनुमा बनाए रखने वाले थे।

बनाया। भाई तारीफ जितनी की जाए शमी कपूर साहब की वो कम है। 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के लिए शमी कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म में उनका भावुक और संवेदनशील अभिनय लोगों को बेहद पसंद आया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म दिल के झरोके में

गीत की शूटिंग के दौरान वे इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दोस्तों, समय के साथ शम्मी कपूर ने चरित्र भूमिकाएं भी निभाई। उन्होंने फिल्मों में पिता, दादाजी और सहायक किरदारों में भी अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन चाहे कोई भी दौर रहा हो, उनके भीतर का वो मस्त मौला इंसान हमेशा कायम था।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: दोस्तों 14 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका अंदाज, उनकी मुस्कान और उनके गीत आज भी सदाबहार हैं। उनके फिल्मों के गीत आज भी हर पीढ़ी को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। और सच कहें तो शम्मी कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि हिंदी सिनेमा के सबसे रंगीन यादों में से एक हैं। तो दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम एक ही कलाकार से आज आपका ये रेडियो दोस्त सदक चाहता है इजाजत। आपको बता दें कि 9:15 पर लेकर आएंगे महफिल गजल और 9:30 से 10:30 तक चलेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम, जी हां लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। आप करिएगा दिलचस्प बातें, अपनी पसंद का गाना भी लेकर आइएगा उस प्रोग्राम में, हमें रहेगा आपका इंतजार। फिलहाल इस प्रोग्राम एक ही कलाकार से दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार से, एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने जा रहे हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा

0: निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है। हर फैसले

0: से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
4: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, नियम प्रशासन

0: सार्वजनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region.

0: सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
2: प्रोग्राम महफिल गजल में आप सभी का इस्तकबाल करता है आपका रेडियो दोस्त सदक। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। पहली गजल जगजीत सिंह की मखमली आवाज में।

जज्बात एल्बम से आपने इस गजल को सुना, और आइए सुनते हैं अदा एल्बम का ये गजल लता मंगेशकर की आवाज में। कलाम है अनजान का।

0: आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: प्रोग्राम महफिल गजल में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज को एल्बम हुस्ने गजल से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम महफिल गजल एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपका ये स्टेशन है एफएम आकाशवाणी अयोध्या। आप सभी सुनने जा रहे हैं, 9:30 हो चुके हैं, आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। तो आइए शुरुआत करेंगे इस प्यारे से प्रोग्राम की, इस पहले कॉमर्शियल ब्रेक के साथ।
1: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राय।

0: बरेली रोड अयोध्या, कॉल करें 9044-20-70-70।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: प्रोग्राम हेलो अयोध्या में आप सभी का स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त सदक। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी जुड़िए 7376-8090 नंबर को डायल कीजिए। आज अगर आप कभी इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आज अभी एक घंटे के इस प्रोग्राम में जरूर से जुड़िए अपनी दिलचस्प बातों के साथ, अपनी पसंद के गीत के साथ। और जिन श्रोताओं ने पिछले 10 दिनों में फोन लगाया हो वो कृपया करके अभी फोन नहीं करेंगे इस प्रोग्राम में। चलिए हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं जी, अपना नाम बताइए।
3: संजय वर्मा बात कर रहा हूँ।
2: संजय वर्मा जी इंदौर से जुड़ रहे हैं जी। किस फिल्म का गाना सुनेंगे सर?
3: फिल्म नजराना का गाना सुनवा दीजिए सर। नजराना का मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, राजेश खन्ना जी की फिल्म के लिए।
2: मैं देख रहा हूँ नजराना हमारे पास होना चाहिए, मुझे तो दिख नहीं रहा नजराना एल्बम से तो नहीं हमारे पास, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर किसी एल्बम में होगा, ये कलेक्शन में होगा तो मिलेगा। और कोई गाने की ख्वाहिश हो तो बताइए, इसके अलावा
3: लाला मजनू का सुनवा दीजिए, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने।
2: हाँ, ये आपको जरूर मिलेगा। क्या करते हैं सर आप संजय वर्मा जी?
3: सर मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ।
2: अच्छा, कहाँ से रिटायर्ड हुए?
3: गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर्ड हूँ।
2: अच्छा, चलिए, तो आप तो नियमित श्रोता है, मुझे लगता है आपसे पहले भी मेरी बात हो चुकी है किसी प्रोग्राम में। संजय जी, मैं
3: सदक साहब बोल रहे हैं
2: जी, सदक बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी मेरी ना?
3: हाँ, हुई थी आपसे मेरी बात।
2: जी जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो लता मंगेशकर की आवाज में लैला मजनू का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ठीक है? सुनिए संजय जी, थैंक यू।

0: आइए जुड़ते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे श्रोता से। हेलो,
1: चांद अधूरा है चांदनी के बिना, आसमान अधूरा सितारों के बिना, और हम अधूरे आकाशवाणी अयोध्या के बिना।
0: वाह भाई वाह, इतने प्यारे अंदाज में हमसे कौन जुड़ रहा है और कहां से?
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही है सर, पालताना का इंदौर से।
0: वाह भाई, आज तो इंदौर का मामला अच्छा चल रहा है। पहली कॉल भी इंदौर से आ गई और दूसरी कॉल भी इंदौर से आ गई। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया इंदौर।
1: अच्छा एक और लगा था क्या सर अभी कुछ?
0: हाँ, इससे पहले संजय वर्मा जी जो पहली कॉल आई वो भी इंदौर से थे।
1: अच्छा अच्छा जी
0: जी, आप सुन नहीं रहे थे प्रोग्राम लग रहा है। कोई बात नहीं,
1: नहीं अभी चालू करा सर मैंने।
0: आपका गाना
1: अभी लेला मजनू गाना चल रहा था ना जो सुना।
0: हाँ हाँ, वही इंदौर से वो संजय जी ने सुना था उसको।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो क्या करती हैं हसीना जी आप?
1: हम सिलाई करते सर।
0: हेलो, मैंने कहा
1: सिलाई करते सर, सिलाई
0: सिलाई करती हूँ। ओके, तो क्या क्या सिलाई में कौन कौन से कपड़े सिलती हैं लेडीज जेंट्स?
1: रेडी मेड का काम होता है सर, जूट का।
0: लेडीज का काम करती हैं?
1: जूट का होता है।
0: अच्छा, जूट का काम होता है। ओके वेरी नाइस।
1: जी जी जी,
0: तो अलग किस्म का काम है। तो इसको कैसे सिलते हैं जूट को? मशीन से, नॉर्मल मशीन से सिला जाता है किसी और चीज से?
1: मशीन से भी होता है सर, और हाथ से भी रिपेयरिंग होता है। फटा हुआ था ना, सुई से हाथ से होता है रिपेयरिंग।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो आज आपने जिद्दी फिल्म का ये गाना चुना है, बड़ा प्यारा सा ना, रात का समा झूमे चंद्रमा।
1: हाँ, फिल्म का नाम है जिद्दी, लता जी की आवाज में और गाने की बोले। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजलियां, रात का समा।
0: वाह भाई हसीना जी, आपने इस प्रोग्राम को हसीन बना दिया, बहुत शुक्रिया। फिर जुड़िएगा हमारे इस प्रोग्राम से।
1: चलिए,
0: आपकी पसंद का गाना पहुंच रहा, सुनिए अपने साथ अपनों के साथ, ठीक है?

0: लखीमपुर खीरे के अपने श्रोता से बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें। जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
0: श्रोताओं एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम हेलो अयोध्या में। आइए जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो।
4: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्कार सर, अपना नाम बताएं।
4: मेरा नाम है विजयपाल यादव, ललहुआ लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ सर।
0: विजयपाल यादव जी लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के एकदम किनारे से जो कि दूसरे देश से जुड़ा हुआ है कि नहीं? उत्तर में नेपाल है ना आपके? हमने कहा आपका उत्तर साइड जो है नेपाल से जुड़ा हुआ है ना, दूसरे देश से?
4: जी, नेपाल से जुड़ा हुआ है।
0: तो आपके घर से कितनी दूरी है नेपाल की बॉर्डर की?
4: नहीं, हम तो सर लखीमपुर और सीतापुर के बॉर्डर पर हैं सर।
0: अच्छा अच्छा, तो दूरी ज्यादा होगी वहाँ से ना?
4: जी, यहाँ से दूरी ज्यादा है।
0: तब भी कितने किलोमीटर?
4: लखीमपुर ही है।
0: अच्छा अच्छा,
4: हाँ, बॉर्डर पर हम।
0: ओके, नहीं मैं पूछ रहा हूँ दूरी कितनी है बॉर्डर की?
4: दूरी सर होगी 200 किलो।
0: अच्छा,
4: तो कम।
0: अच्छा, इतनी होगी। चलिए, तो काफी दूर है।
4: हाँ, बहुत दूरी है।
0: हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं आप विजय जी?
4: खेती करते हैं सर।
0: अच्छा, तो

0: समय खेती कैसी चल रही है आपकी? गर्मी का मौसम है,
1: खेती बढ़िया चल, गर्मी का मौसम है,
0: हाँ
1: 42 डिग्री के ऊपर तापक्रम रहता है हमारे यहाँ समय।
0: अच्छा अच्छा, तो खेतों में काम करने के लिए कौन सा वक्त चुनते हैं इस समय गर्मियों में?
1: इस समय सुबह जल्दी निकल जाते हैं।
0: कितने बजे चले जाते हैं खेत?
1: खेत को 5 बजे निकल जाते हैं और 9-9:30 बजे तक आ जाते हैं वापस रूम को।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा करते हैं।
1: दोपहर में इतनी तेज गर्मी होती, बाहर निकलने का जी ही नहीं होता।
0: नहीं नहीं, वो तरीका वही सही है जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल। हम लोग भी रेडियो से बराबर समझा रहे हैं कि हो सके तो अपना काम सुबह और शाम में निपटाएं, दिन में घर से ना निकलें, बहुत जरूरी ना हो तो, है कि नहीं?
1: शाम को सर करने का समय भी नहीं मिलता, 5 बजे के बाद में थोड़ा जाओ फिर तब तक शाम हो जाती है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो सुबह का टाइम अच्छा निकल जाता है, बढ़िया काम भी हो जाता होगा उसमें।
1: सुबह का टाइम ज्यादा मिल जाता है, काम भी अच्छा हो जाता है।
0: कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुनना चाहा है, ये बड़ा प्यारा सा गाना, मुझे बहुत पसंद है ये, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती है नजारे हम क्या देखें।
1: चल सर, इस गाने को मैं
0: जी
1: बलरामपुर के विजय पांडे जी हैं उनको सुनाना चाहता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो
1: और वो हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त है।
0: बहुत अच्छी बात है, चलिए उन तक भी ये गीत पहुँचे,
1: गाना आपको भी सुनवा रहे हैं।
0: ठीक है सर, ओके, थैंक यू, लीजिए सुनिए।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: भाई देखिए, हमारे एक श्रोता ऑफलाइन हमसे जुड़े, अर्जुन जी। बहुत लंबी मेरी बात हुई, कई सारे गाने सजेस्ट किए और आखिरकार उनकी कॉल ड्रॉप हो गई किन्हीं कारणों से। बहुत माफी चाहते हैं उनसे, और उन्होंने गाना सुनना चाहा था मेरा गांव मेरा देश से मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बहरहाल लाइन तो उनकी छूट चुकी है, लेकिन गाना उनका मेरे पास है। मैं अगले कॉलर से बात करना चाहूंगा उनके गानों के साथ। देखते हैं कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रही हैं?
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए मैम।
1: शिवकुमार मिश्रा बोल रहा हूँ।
0: शिवकुमार मिश्रा जी बोल रहे हैं, सॉरी। तो शिवकुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी नंदिनी कॉलेज के बगल बालापुर से जी।
0: वाह भाई वाह। तो गाना आप वही सुनेंगे जो अर्जुन जी की कॉल ड्रॉप हुई है, जिस पर आप जुड़े हैं, कि दूसरा सुनेंगे?
1: जी मैं दूसरा सुना दो।
0: कौन सा बताइए?
1: राजा हिंदुस्तानी का सुना दो।
0: राजा हिंदुस्तानी का सुनेंगे आप?
1: जी सर।
0: जरूर सुनाएंगे सर आपको हम राजा हिंदुस्तानी का गाना। तो क्या करते हैं आप?
1: जी हम घर पे रहते हैं।
0: घर पे रहते हैं तो घर पे कुछ तो करते होंगे?
1: नहीं सर, कुछ नहीं करते।
0: ऐसा क्यों?
1: वैसे सर हम कुछ नहीं करते घर पर।
0: कितनी उम्र है आपकी?
1: सर 22 साल उम्र है।
0: अच्छा, चलिए। कोई दिक्कत तो नहीं है शारीरिक अक्षमता, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है आपको?
1: नहीं सर। हाँ थोड़ा आँख से कम दिखता है सर।
0: हाँ वही मैं कह रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो रेडियो तो आप सुनते होंगे ना मजे का?
1: हाँ सर रेडियो सुनते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, रेडियो सुनिए, रेडियो से बहुत सारा ज्ञान सूचना मनोरंजन आप तक पहुँचता है। राजा हिंदुस्तानी में कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया वही सुना।
0: वाह प्यारा गाना है, बिल्कुल आपको सुनवा रहे हैं ये गीत हम। चलिए हमसे फिर जुड़िएगा। नमस्ते।
1: जी

0: श्रोताओं, अगले श्रोता से बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के उस पार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: भई आपके मन का रेडियो बज रहा है और मन से हमारे अगले श्रोता जुड़ेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। उनके मन का गाना भी हमने लगा दिया है फिल्म सौगंध से। हेलो
3: जी सर,
0: अपना नाम बताइए और कहां से आपने फोन लगाया सर?
3: सर ओम प्रकाश वर्मा, मीठा बड़ा गांव अयोध्या।
0: ओम प्रकाश वर्मा जी जुड़ रहे हैं बड़ा गांव अयोध्या से। तो आपके गांव का नाम बड़ा अच्छा है, बड़ा गांव, तो क्या आप इसके बारे में?
3: सर हमारा तो सर मीठा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बड़ा गांव लगता है सर।
0: हाँ, तो जो पोस्ट लगता है वो भी आपके ही हिस्से में आया भाई, तो इसका नाम बता पाएंगे कि बड़ा गांव क्यों पड़ा? साइज ज्यादा था इसका या और कोई कारण था?
3: सर इसका तो उर्दू का नाम है मुस्तफाबाद, लेकिन बड़ा गांव रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है सर।
0: अच्छा, चलिए, नहीं मैं सोच रहा था कोई हिस्ट्री होगी इसकी शायद, कि बड़ा गांव रखा है तो और गांवों से मुकाबले बड़ा रहा होगा या फिर कोई और वजह रही होगी कोई, है ना?
3: ये तो सर बड़ा बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ अन्य गाँव के मुकाबले।
0: हाँ, तो हो सकता है यही वजह रही हो ना इसकी। गाना आपने चुन रखा है सौगंध फिल्म का, वो हम आपके लिए बजा रहे हैं। क्या करते हैं आप परमा जी?
3: सर वही करते हैं जिस पे दुनिया निर्भर है, लेकिन सुनी कहीं नहीं जाती उसकी।
0: अरे क्या करते हैं, खेती किसानी। हाँ आप तो अन्नदाता हैं भाई, भगवान हैं बिल्कुल।
3: हाँ लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती सर किसानों की। जहाँ जाओ वहीं से इनको भगा दिया जाता है।
0: अरे नहीं,
3: चलो अभी आ गया।
0: ऐसी निराशाजनक बातें आप ना करें। देखिए आपकी पसंद का गाना हम सुनाएंगे और आपकी कॉल लगी है, कहाँ आपको आराम से होल्ड किया। देखिए आपसे बात भी करेंगे हम ना, हमारे यहाँ तो सबके लिए खुला है ना। तो और बताइए क्या हाल चाल है, क्या पसंद करते हैं, खेती के अलावा क्या शौक रखते हैं आप वर्मा जी?
3: क्योंकि सर खेती है, इसके अलावा शौक क्या हो सकता है? खेती में जो है फसलें लगाओ अपना करो।
0: नहीं वो तो है ही, एक मजेदार चीज है खेतों के साथ पौधों के साथ जीना, है ना, काम करना। उसके अलावा भी हर इंसान के अपने कुछ शौक होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हाँ बोलिए।
3: घूमना ज्यादा पसंद है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, घूमिए, इससे ज्ञान बढ़ेगा और खुश रहेंगे आप। और आपको खुश रखने के लिए देखिए आकाशवाणी भी आपके साथ है और आपकी पसंद का गाना पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर।
3: थैंक यू सर।

0: भाई बहुत प्यारा सा गाना अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में चल रहा है, लेकिन हमारे अगले श्रोता जुड़ेंगे। हेलो।
1: हेलो। हाँ सर
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: हम रिंकी यादव बोल रहे हैं,
0: शहादतगंज अयोध्या से। रिंकी यादव जी जुड़ गई है, क्या करती है रिंकी जी?
1: हम हाउस
0: वाइफ है। गाना कौन सा सुन रही है आज आप?
1: हम शराबी फिल्म का।
0: शराबी फिल्म का वो भी सुन रही है, मुझे 900,000 मगा दे, है ना? तो यही वाला गाना चुनने की कोई वजह है क्या पति देव से?
1: नहीं, अच्छा लगता है।
0: हाँ, हम सोचे कि गाना सुनवा के फिर जो है नुकसान करेंगी आप। और अभी तो बड़ा सोना महंगा भी है, और देखिए निवेदन भी किया जा रहा है कि सोना ना खरीदा जाए, है ना? लेकिन आप इस गाने के जरिए लोगों को कह रही हैं 900,000 मंगाने के लिए। एनीवेज, आपकी पसंद सराखों पर गाना जरूर सुनाया जाएगा। आप हाउस वाइफ है, और क्या शौक है आपके? सिलाई का काम कर लेती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पैसे भी लेती हैं सिलाई का काम करके कि घर वर का ही खाली सिलती हैं?
1: नहीं, पैसे वैसे नहीं लेते, बस किसी का जरूरतमंद
0: मतलब अपना घर का ही ज्यादातर सिलती है और किसी की मदद कर देती है। चलिए बहुत बढ़िया है। ओके रिंकी जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, हमें फिर फोन कीजिएगा। नमस्कार। नमस्ते।

0: आइए बात करते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो।
1: हाँ
0: जी नमस्ते, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन लगाया आपने।
1: सर मैंने अपना नाम तो बताया है, प्रीति विश्वकर्मा मेरा नाम है, मैं 10वीं से कॉल लगाए हूँ, रानीपुर बसवा गाँव।
0: प्रीति विश्वकर्मा जी बस्ती से, अब आपकी आवाज रेडियो पर जा रही, सबके पास सब सुन रहे हैं ना। पहले तो मैंने ही परिचय जाना था, आप सभी लोग जान जाएंगे, है ना। चलिए तो प्रीति जी आप कौन सा गाना सुनना चाह रही हैं आज।
1: ये चांद कोई दीवाना है।
0: ये चांद कोई दीवाना है, छुपा रुस्तम फिल्म का ये गाना है। क्या करती हैं आप प्रीति।
1: क्या सर।
0: क्या करती हैं आप।
1: सर घर पर रहते हैं।
0: घर पर रहती हैं, तो घर पर रहकर क्या कुछ करती हैं।
1: घर का काम करते हैं और कुछ नहीं करते, आपका रेडियो सुनते हैं।
0: अरे वाह, तो घर के कामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा काम क्या है आपका।
1: सर मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: खाना बनाने में सबसे ज्यादा कौन सा खाना बनाना अच्छा लगता है, जिसकी सब तारीफ करते हैं घर में कि ये बहुत बढ़िया बनाती है प्रीति।
1: सर मुझे वो खीर बहुत अच्छा लगता है, बनाने में भी खाने में भी।
0: खीर। खीर कैसा बनाती है, चावल वाला कि वो चावल को पीस कर।
1: सर चावल वाला।
0: चावल वाला, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए आपने प्रोग्राम में थोड़ा मीठा मीठा स्वाद डाल दिया है, है ना। आपका गाना हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है प्रीति जी, फिर फोन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।

0: हम अपनी अगली श्रोता से बात करेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का। लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
2: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
1: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
2: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
1: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
2: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
1: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज

0: आज गूंज रही है।
1: श्रोताओं हमारे साथ अगली श्रोता जुड़ रही है इस प्रोग्राम में, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्ते, अपना नाम बता दीजिए एक बार।
2: जी सर, अनुराव।
1: अनुराव, कहाँ से फोन लगाया आपने?
2: जी सर,
1: कहाँ से फोन लगाया है, किस जगह से?
2: जी सर, हेलो फैजाबाद।
1: हाँ हेलो फैजाबाद में आपने फोन लगाया, मैंने कहाँ से फोन लगाया है, किस जगह से?
2: जी सर, ग्राम बदन का क्रॉस से।
1: ग्राम बदन का पुरवा से आपने फोन लगाया और आपकी पसंद का गाना जब जब फूल खिले से आप सुन रही हैं, ठीक है। क्या करती हैं आप?
2: जी सर, हम तो पढ़ाई करते हैं सर, और घर पर भी रहते हैं।
1: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं?
2: सर इस समय हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं।
1: सीटेट की तैयारी कर रही हैं, ओके गुड।
2: जी सर, ऑनलाइन।
1: बहुत बढ़िया, तो अच्छी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, बढ़िया टीचर्स मिल रहे हैं?
2: जी सर, हमारी दो बहनें हैं, वो बाहर तैयारी करती हैं, लेकिन मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए हम घर पर ही तैयारी करते हैं।
1: कोई दिक्कत नहीं, मैं यही तो पूछ रहा था कि जो बाहर जो लोग तैयारी करते हैं, बाहर के टीचर से पढ़ते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आपको चीजें समझ में आती हैं जो टीचर्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन? समझ में तो आता होगा ना सर?
2: जी सर, हाँ, अच्छे से। अच्छा सर,
1: ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑनलाइन भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं,
2: उनसे पढ़ा जा
1: सकता है। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। चलिए चलिए, तो आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं, एक था गुल और एक थी बुलबुल ना, ये गाना सुनना आपको।
2: जी सर,
1: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुनिए अपनी पसंद का गाना।

0: वो दोनों।
1: इस गीत में पूरी कहानी है और पूरी कहानी सुनेंगे तो ये लंबी है, 7.5 मिनट की कहानी है। आइए अपने अगले श्रोता से बात करते हैं हम, और इस बीच हमसे सतीश जी जुड़े गुरुद्वारा अमानीगंज के पास से, और न जाने कैसे वो कॉल ड्रॉप रही उनकी। फिलहाल उनसे माफी चाहते हुए अगले श्रोता से जुड़ रहे हैं हम। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्ते। कौन बोल रही, कहाँ से बोल रही है?
2: सर मेरा नाम ज्योति निशान, मैं नवाबगंज गोंडा से बोल रही।
1: बहुत स्वागत है ज्योति का, और कसूर फिल्म का गाना आप सुनना चाह रही हैं। ये बड़ी अच्छी म्यूजिकल हिट फिल्म थी, इसमें सारे गाने बहुत अच्छे हैं, और गाना आपका लगा दिया गया है। क्या करती हैं आप?
2: सर मेरी कॉल पहली बार लगी है।
1: अरे वाह, ये तो और खुशी की बात है भाई कि पहली बार आज। अच्छा अच्छा, चलिए
2: क्या,
1: चलिए बहुत अच्छी बात। पहली, इससे पहले भी कभी आपने कोशिश की है इस प्रोग्राम में जुड़ने की आज के अलावा?
2: यस सर, कल भी कर रहे थे और परसों सुबह भी कर रहे थे,
1: लग नहीं रहा था। चलिए मेरी किस्मत अच्छी थी भाई, आप मेरे प्रोग्राम से जुड़ गई, है ना ज्योति जी? क्या करती हैं आप?
2: यस सर, अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
1: कौन सी क्लास में पहुंच गई?
2: क्या हो सर?
1: किस क्लास में पहुंच गई?
2: इस बार हाई स्कूल पास हुए, अब 11th में
1: है। बहुत बढ़िया, अच्छे नंबर आए होंगे मैं जान रहा हूँ। ठीक है, और क्या शौक रखती है पढ़ाई के अलावा?
2: सर और शौक रख रहे हैं, जो पढ़ाई पूरी हो जाए फिर देखेंगे, वैसे तो शौक है बहुत कुछ।
1: अच्छा, कुछ सपने भी होंगे कुछ बनने के, है ना?
2: यस सर, यस सर है।
1: क्या है बनने का सपना, जानू कि ना जानू? बताने से कुछ लोग कहते हैं पूरा नहीं होता ना, इसलिए नहीं बताते।
2: नहीं सर जी, दुआ भी तो लग जाती है।
1: हाँ दुआ लग, मैं दुआ जरूर करूंगा, अगर आप बताएंगी मैं तुरंत आशीर्वाद दूंगा कि भाई बिटिया आगे बढ़े।
2: सर एनएमसीएम का कोर्स करना चाह रहे हैं, कंप्लीट हो जाए तो।
1: हमारा आशीर्वाद है, दुआएं हैं कि आप जरूर खूब मेहनत से पढ़ें और जो भी आपका सपना है वो पूरा हो, अच्छे सपने। चलिए तो आपका गाना पहुंचा रहे हैं ज्योति, ठीक है सुनिए सबके साथ।
2: ठीक है सर, नमस्ते सर।
1: नमस्ते।

0: आइए जुड़ते हैं हमारे प्रोग्राम के अंतिम श्रोता से। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? रेडियो धीमा कर लीजिए, रेडियो मत चलाइए सर अपना। हाँ नहीं नहीं रेडियो नहीं चलाना होता है, जब भी बात होती है तो रेडियो बंद कर लेना होता है सभी श्रोताओं।
1: जी
0: तो अपना नाम बता दें सर, कहाँ से फोन कर रहे हैं आप?
1: विनोद कुमार गुप्ता, अमानीगंज कॉलोनी।
0: चलिए बहुत खुशी हो रही मुझे, अमानीगंज कॉलोनी से आप जुड़ गए। सतीश जी अमानीगंज से ही फोन लगाए थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए तो उनकी जगह आप आ गए, है ना? अच्छा लग रहा मुझे। तो कौन सा गाना सुन रहे हैं सर आप?
1: जी सर
0: कौन सा गाना सुनवा रहे हैं सबको आज?
1: मुकद्दर सिकंदर सुनवा दीजिए।
0: वो साथी रे।
1: जी।
0: क्या करते हैं आप विनोद जी?
1: मैं आपके केनरा बैंक ब्रांच में हूँ।
0: अच्छा बहुत बढ़िया,
1: आपके पीछे नहर बाग अवध माल के बगल।
0: हाँ जी देख रहा हूँ मैं केनरा बैंक।
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है,
1: कभी स्वागत है आपका।
0: जरूर मुलाकात होगी। और गाने सुनने के अलावा और क्या शौक रखते हैं आप विनोद जी?
1: बस घूमना फिरना, रेडियो सुनना और हर जनता जनार्दन की सेवा करना।
0: बहुत बढ़िया, और लोगों को रेडियो सुनने के लिए प्रेरित करिए, रेडियो से अच्छा कोई स्रोत है नहीं। आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है आपने।
1: जी आप लोगों के प्यार में रात 11 बजे तक जगते हैं।
0: बहुत शुक्रिया आपका। चलिए विनोद जी आपका गाना पहुंचा रहे हैं।
1: ओके
0: थैंक यू सर।

ना भाई, ये प्यारा सा प्रोग्राम आप तक पहुंचा आकाशवाणी अयोध्या से, एफएम आकाशवाणी से। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में मैं तकनीकी सहयोग दिया अश्विनी कुमार शुक्ला जी ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल, और अपने दोस्त सदक को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को अब से लेकर रात्रि 11 बजे तक।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। ये एफएम आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। 11 बजने को है। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य

0: अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुगोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।